0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्री

0: को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम पे 343 शरिया 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्रीराम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का

युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

शाम 4:30 बजे श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। गुरबाणी विचार प्रोग्राम सरवण करो शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां होणगियां, मंडियां ते भां होणगे। अवतार सिंह बिलिंग दे नावल ते आधारित लड़ीवार नाटक होया देस पराया दा अगला भाग सुनोगे। इस तों इलावा दुध अते दुध पदार्थां दी संभाल बारे डॉक्टर अमनदीप जानकारी देणगे।

0: उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।

0: ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति, मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अंतिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 MHz किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 MHz, एफएम 100.9 MHz ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश दी अनमोल विरासत नूं सुरक्षित रखण लई काम कर रही है। आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च राष्ट्र नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने देशवासियों नूं भयानक गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी बरतन अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती है। विज्ञान अते टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 सालों के तकनीकी बदलाव दौरान भारत टेक्नोलॉजी लैण वाले की थां एक टेक्नोलॉजी आगू वजों उभरिया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चोटी दियां पोजीशनां हासिल करन वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात की। उन्होंने राज दी सिख्या प्रणाली च होरे महत्वपूर्ण सुधारां ते खुशी प्रगट की। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदियां मुआफी मंगी है। पंजाब दे माल मुड़ मुसीबा ते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्या है कि सरकार ने हड़ रोकू कार्जा ते सूबे भर विच किसी भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटन लई अगाऊं 146 करोड़ रुपए जारी कीते ने। पंजाब ने देश भर चो तंबाकू सेवन दे सब तो घट मामलियां नाल जनतक सेहत विच एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ के वक् वक् हिस्सों च गरज चमक नाल तेज हवावां चलण संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल क्रिकेट विश्व 26 का खिताब जित लिया है। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈ ਰਾਜ ਰੰਕੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ

सिंगापुर ओपन बैडमिंटन च पुरुष डबल्स दा खिताब जित लिया। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र मीडियम हिप 343 शरीय जी मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते पेश कर रहे प्रोग्राम सोनी सवेर।

लो जी, गाना खास तौर ते इसलिए सुनाया है, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ। असी दुनिया दे करीब जाना लोचदे हाँ, पर कदी अपने करीब जाण दी कोशिश नहीं कीती। जरा शीशे दे अग्गे जदों खड़े हुन्ने हो या मोबाइल ते सेल्फी लैन्ने हो, की सोच के लैन्ने हो? कदी अपने आप नूं सवाल पुछे भी तेरा दिल की चाहुंदा है, तेरी इच्छा की है? या हाँ, जिहड़ी गल पहलां कीती सी कि दिमाग ते मन नूं भी साफ करना जरूरी है, ते ओह कॉपी पेन दी गल कीती सी। मन साडा है, बड़े सारे विचार दिन पर आउंदे ने। मन यानी दिल या मन या दिल दोनों वक्रे वक्रे ने, इहदे बारे थोड़ा विचार कर लियो तुसी खुद। इस वेले मैं निक्का जिहा विचार थोड़े नाल सांझा करांगी कि साडे दिमाग दे विच जिहड़ी कहानी चलदी है ना, ओह साडे दिल दे उलट चलदी है। साडे मन च हमेशा ओह चलदा है जो असी नहीं चाहुंदे, ते बस फिर वो कहानी किसी ना किसी रूप से तो प्रगट हो ही जाती है, क्योंकि बीज तुसी अपने दिमाग दे विच विचार दा बीजिया। जे वो विचार नैगेटिव सी तो कहानी नैगेटिव नैगेटिव बूटा उगेगा, वह जे विचार थोड़े आले दुआले हो जाएंगे, वह जे लोग प्रगट हो जाएंगे। मैं नहीं कहती, ये विद्वान कहते हैं। इस करके अपने दिमाग की सफाई करनी बड़ी जरूरी है। तुसी कहना किद्दां कर सकते हैं, किद्दां लिखिए, किद्दां मिलिए? दुनिया नूं मिलण तो पहला अपने आप नूं जरूर मिलो। सवेरे उठदे हां शीशे च मिल लो, या रात नूं सौण तो पहला मिल लो, ते अपने आप नूं इक्को ही सवाल करो, मेरी जिंदगी दा अज दा दिन किसे दे काम आ सकिया? मैं किसे नूं हसा सकी? मैं किसे नूं किसे दा पेट भरन चों दी मदद कर सकी? मैं कि मैं अपने आप दी तारीफ कर सकी? क्या मेरे अंदर जो इंसान बैठा है ओदी दिली इच्छा की सी कि उसनूं पूरा करन वाली कदम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में

हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। प्रधानमंत्री

0: दारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार

0: دوسری بار آئی پی ایل کا خطاب جیتا. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए. विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया. विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती. वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की. मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला. मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला. उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी. साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला. उन्होंने 75 चौके लगाए. वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं. और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा.
1: धन्यवाद लवलीन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय. ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है. पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है. भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू. भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार. अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां FTA. पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी. सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है. रोहतांग में बर्फबारी. मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार. जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई. प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए. पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है.
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे. 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी. केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन. और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता. इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग हाइन इन न्यू दिल्ली टुडे। Notification for biennial elections to 24 Rajya Sabha seats from 10 states to be issued this morning.

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नू, ते ओ हुन हो गया शनिवार नू।
0: यानी कि झांझरां दे बोर हुन शनिवार।

साल दी उमर च देहांत हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते आस्ट्रेलिया दे उप प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल अज नवीं दिल्ली च दूजी भारत आस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री पदरी गलबात दी सह प्रधानगी करनगे। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदे माफी मंगी है। पंजाब दे माल मुड़ वसेबा ते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्से कि सरकार ने हड़ रोकू कारजां ते सूबे भर विच किसी भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटण लई अगाऊ 146 करोड़ रुपए जारी कीते ने। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सेयां च गरज चमक नाल तेज हवावां चलण संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है। क्रिकेट च रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल 226 का खिताब जित लिया। ते भारत दे मोगली वेंकटराम ने हांगकांग च एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप च मर्दां दी 800 मीटर दौड़ च सोने दा तमगा जित्तिया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से सी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण महिलाएं शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुरसाधना दा आज दे इस प्रोग्राम च पंडित विश्व मोहन भट्ट दा गिटार ते बजाया राग अहीर भैरव पेश कर रहे हैं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं

0: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
1: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
1: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
1: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
1: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
1: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक
0: जी,
1: है
0: जी।
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
0: जी।
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
0: जी,
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
0: जी,
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
0: जी।
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसे

0: स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे, इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
1: जी
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं। इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है।
0: ओके।
1: और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं।
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई

0: आपकी बात नहीं समझ सुनेगा। पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ के सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी,
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी,
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना

0: को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है, आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी,
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी,
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से, और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार

0: और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हुणे तुसी NCERT स्पॉन्सर्ड उमंग सुन रहे सी।

मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों च गरज चमक नाल तेज हवावां चलण संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट च रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल 2026 का खिताब जित लिया है। ते भारत के मोगली वेंकटराम ने हांगकांग च एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप च मर्दां दी 800 मीटर दौड़ च सोने का तमगा जित्या है।

हेलो फरमाइश प्रोग्राम लैके परमिंदर थोड़ी सेवा च हाजिर। अज का यह प्रोग्राम खास तौर पर थोड़े सब लिए है। 0181-2342-173 नंबर डायल करके अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्मी गीत सुन सकते हो। जिमें कि साढ़े सुनने वाले जानते हैं कि एक मिठी प्यारी आवाज़ सुमन कल्याणपुर जिहड़े कल सानू सदीवी विछोड़ा दे गए ने, पर उन्हां वल्लों गाए हुए गीत रहिंदी दुनिया तक याद किए जाणगे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री

शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और

0: जदू जदू भी बने रे भुलका मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: गर्मी तो बचन दे लई देखो दोस्तों असी तां कई साधन लभ लैंदे आ पर इह बेजुबानां दे कोल कोई चारा नहीं हुंदा ते जदों बनेरे ते इह कां कां कां बोल रहे ने जां चिड़ियां आ के बोल रहियां ने ते तुहाडे कोल पाणी दी मंग कर रहियां ने इस चीज़ नूं समझो ते इक कटोरा पाणी रख के उहनां दी प्यास नूं बुझाउण दा यतन जरूर करो ते तुहाडी गीतां दी प्यास नूं असीं बुझा रहे हां तुहाडे तक तुहाडी पसंद दे गीत पहुँचा रहे हां ते हुण अगले गीत दी फरमाइश दे नाल बहुत सारी रली मिली फरमाइश साडे तक पहुँची है ते गीत शामप्रीत दी आवाज़ दे विच तुहानूं सुनावांगे। फरमाइश तुहाडे सब दी इस तरह गुरमीत सिंह मीता साउथ टेंशन नवीं दिल्ली तो इन्होंने सानू मैसेज किया रेलवे रोड मोड़ मंडी तो बलजिंदर कैंथ रोशन कैंथ सिमरन हनी ते रबाब कैंथ ते करन आस्ट्रेलिया तो मैसेज कर रहे हैं। इस तरह करणवीर हाउस पुचो कैंचियां बठिंडा पंजाब तो प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन ते अभिजोत हुना दा सानू मैसेज मिलिया। यह मैसेज सानू मिलिया धनौरी तेलीवाला तो निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू हुना दा मैसेज है। इस तरह मंडी अरनीवाला तो बलविंदर बुट्टर गोरा बुट्टर गुरसांझ बुट्टर कुलदीप भुल्लर मकैनिक हुना दा सानू मैसेज मिलिया। ये मैसेज सानू मिलिया है इन्होंने लिखिया है जी मध्य प्रदेश तो मैसेज सानू मिलिया बरजिंदर विश्वकर्मा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया

0: सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वास्ते वीडियो।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। प्रोग्राम वसदी वेड़े लेके हरप्रीत हाजिर है जी।
0: जी हरप्रीत नाल मैं पूनम भी हाजिर हाँ जी।
1: की हाल चाल है पूनम जी?
0: हाल चाल दुरुस्त ने जी। पहली तारीख है ते देखो जेड़िया हफ्ते दा भी पहला दिन है, वर्किंग डे है
1: जी।
0: ते बच्चियां नूं छुट्टियां भी शुरू हो गईयां ने ते हुण छुट्टी दा माहौल एक असी आस पास अपने महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, जड़ा जदों आपां घरों निकले सीगे अज कि असी हुण रेडियो पहुँचना आ ते पूरे एहतियात दे नाल निकले सी कि पानी पी के निकले सी और नाल भी लैके आया पानी, और कोशिश कीती है कि सूती कपड़े पा के आइए
0: जी
1: और उहदे विच भी बड़ी वरायटी है ते हर चीज़ नूं फॉलो करन दी कोशिश कर रहे हैं काइंड भी इस करके कि हुण छुट्टियां ने ते सेहत दा ध्यान पूरा रखना है, घूमना फिरना है, इंजॉय करना है और बच्चियां नूं कुछ सेध भी देण दी कोशिश करनी है कि जिद्दां बच्चे टाइम नूं यूटिलाइज करन उह ज़्यादा बैटर रहेगा।
0: बिल्कुल जी। ये समा जिहड़ा हुंदा है वह छुट्टियां तो इसलिए हुंदा है कि असीं घर दे विच आराम भी कर सकीए, गर्मी तो राहत भी महसूस कर सकीए ते नाल ही इस समय नूं असीं किवें बेहतर बना सकते हैं, किवें नवीं चीज़ां सीख सकते हैं, असीं होर किवें अपने आस पास दे माहौल नूं देखदिआं होइआं या फिर अपने घर दे विच रिश्तेदारी दे विच रिश्तिआं नूं होर मजबूत बनाउण दे लई किवें घूम फिर भी सकते हैं।
1: देखो जदों असीं रिश्तिआं दी गल करदे आ ना पूनम जी, जिहड़ा एक सब तो जिन्हों कहिंदे आ कि मज़ेदार पाक और एक इकलौता रिश्ता जिहड़ा हुंदा आ उह हुंदा मम्मी पापा दा, माँ प्यो दा रिश्ता।
0: बिल्कुल जी, तुसी सही कहा, क्योंकि कहिंदे ने कि जो माँ बाप की जगह है ना वह कोई होर नहीं लै सकदा, उन्हां वांग प्यार शायद कोई होर नहीं कर सकता।
1: एग्जैक्टली। ते अज जिहड़ा दिन है 1 जून दा,
0: जी
1: तुसी दस दिता है कि पहला दिन है महीने दा, हफ्ते दा भी पहला दिन है, पर अज ए बड़ा खास दिन है, अज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल मापिया दा दिवस
0: जी। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जिहड़ा ये दिन है पूरे विश्व पद्धर ते मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र वालों की गई सी 2012 दे विच तां कि माँ बाप दे जो योगदान हुंदा है साढ़े जीवन दे विच उसनू असी उस ते गलबात करिए, उसनू सन्मानित करिए ते माँ बाप की अहमियत तो होर बेहतर तरीके दे नाल जाण सकीए। वैसे हरप्रीत जी साढ़े देश दे विच ना साढ़े जो धार्मिक ग्रंथ ने या रीति रिवाज ने साढ़े संस्कार ने उन्हां दे विच माँ बाप के संस्कार की उन्होंने सम्मान की गल तो हमेशा ही की गई है
1: जी।
0: पर विश्व पद्धर से इसनों मानता मिलनी होर भी वड्डी गल है।
1: एग्जैक्टली। और एक होर गल ए जुड़ती है कि आप जो पेरेंट्स की गल करते हैं, माँ बाप की गल करते हैं, असी उन्होंने भी ना भूलीए, क्योंकि जो कोई लेडी कोई सुहाणी जॉब पर जाती है तो उन्हें एक चिंता जरूर होंगी कि पिछे मेरे बेबी का ध्यान कौन रखेगा। जे तो घर वे मम्मी ने वे पापा ने तो भी ठीक है, वह भी माँ बाप ने, है ना। तो कभी कभी असी स्पेशली किसी नूं हायर करते हैं, कई नैनीज जिन्हों आप कहने जेडे बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो यह दिन उन्होंने भी समर्पित है जो बच्चों की देखभाल करते हैं निस्वार्थ लैवल पर। कह लो तुसी, कई बंदे होंगे ने कि चलो ठीक है जॉब भी हैगी है, पर बेसिकली बच्चों की जॉब, बच्चों नूं टेक केयर करना वो जॉब वो अपने आप दे विच ही बहुत मतलब एक जिम्मेवारी
0: समर्पण भावना दे नाल
1: जिम्मेवारी
0: निभाई जाती
1: जी
0: है।
1: जी जी और किसी दे बच्चे दी टेक केयर करनी ये अपने आप च एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है।
0: बिल्कुल जी, किसी बच्चे नूं पालन पोषण करना, उसनूं एक चंगे व्यक्ति बनाउणा, चंगे नागरिक बनाउणा, चंगे इंसान बनाउणा, ये एक जो भी इंसान उसनूं पालदा है उसदी एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी हुंदी है तां कि वह भविख दे विच एक चंगा व्यक्ति साबित हो सके।
1: और जिहड़े भी ये दिन हुंदे ने ना, हर दिन एक थीम नूं लैके सैलीब्रेट किए जाते हैं, जिदां आपां विश्व लैवल ते सैलीब्रेट कर रहे हां, ते 2026 दे विच अज दे दिन दा जिहड़ा थीम उलीकिया गया है वह है मापिया लई इकट्ठे देखभाल करन वालियां दा समर्थन करन दे विच भाईचारे अते समाजिक नीति दी महत्वपूर्ण भूमिका दे उत्ते जोर देना।
0: जी बिल्कुल, देखो जिस तरह इकलौते परिवार होंदे जा रहे हैं ना तो असं समाज तो विखरेवा भी महसूस करते हैं, उस वेले समाज की भूमिका तो सारे ही जिया की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समझनी हो जाती है। बिल्कुल जी, अज असी विश्व पद्धर से जो दिन मना रहे हैं उसकी महत्ता असी जाणीए, अपने माँ बाप न एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन सम्मान दिए, क्योंकि माँ बाप ही होंगे ने जो सब तो ज़्यादा उन्होंने प्यार करते हैं तो चल

0: उकलिता माँ, ये दोनों साज ए अलोप हो रहे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू परफॉर्म एंड प्रिजर्व आवर डाइंग आर्ट फॉर्म ऑफ उकलिता माँ एंड पखावज. एंड आई बिलोंग टू लाहौर बाज ऑफ पंजाब घराना. साडे लाहौर बाज दे पंजाब घराने दी परंपरा और वह जिहड़ा पखावज साज साडा बिल्कुल ही अलोप हो रहा. देखो तुम आप सोचो भी आम लोग समझते भी ये जरा साज साउथ का वा ज ड्रामे महाभारत ज हो फिल्मों के आता. लेकिन क्योंकि मैं पंजाब घराने के लाहौर बाज की परंपरा बिलोंग करना वो मेरा तालुकत हैगा. मैं वो मेरी कड़ी जुड़ी है. वो साड़ी कड़ी जी अकबर काल के नाल पिछोकड़ आपां देखिए तो मियाँ तान साहब के नाल साडे बजुर्ग पखाव जी लाला भगवान भगवान दास पखाव जी और बाबा कादर बख्श पखाव जी ही वॉज द फाउंडर ऑफ पंजाब घराना ऑफ द लाहौर बाज परंपरा जी. अच्छा सुजी सी उस एक होर एक गल गल निकलती है भी ये जरा साज है ये जिते हिंदुस्तान का महान साज आ वो साड़ी गुरबाणी कीर्तन परंपरा का भी बड़ा एक अहम साज आ. क्योंकि गुरु साहब आप पखाव जी सन आप जानते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आप महान मृदंगाचार्य सन और अपने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी असी नितनिम करते उद्दे बाजत ढोल मृदंग नगारे आसा राग के गुरु अर्जन देव पातशाह का महाराज एक शब्द का राग आसा महला पंजवा तेरा जन नृत्य करे गुण गावे ताल पखावज नाद कुंगर अनहद शब्द बजावे. ये पखावज का जरा साढ़े जिते हिंदुस्तान का बड़ा अहम साज आ ये उत्थे साड़ी गुरबाणी कीर्तन दी जड़ी सिख म्यूजिक आली जी उदा एक महान एक साज है.
1: क्या बात है, बहुत ही सोहने अल्फाज तुसी बयान कीता. परमजीत कौर जी संगीतक रुचि तुहाडे प्रौणे नूं ठीक है जी, इन्होंने गाना भी सिख लिया
2: ते
0: तुहानूं भी सिखाया
1: उसे ते आन लगी सी ते तुसी भी सिखिया.
2: हां जी जी
1: तुसी गाना सिखिया कि वजाना सिखिया?
2: गाना चंडीगढ़ चले गए. उस तो बाद फिर इन्होंने मेनू मतलब पहला सब तो पहला मेनू बाणी पाठ सिखाया
1: गुरबाणी कीर्तन.
2: हाँ गुरबाणी कीर्तन सिखाया ये मेरे
1: उस्ताद ने.
2: उस्ताद जी भी है
1: जी. कहंदे ने कि जदों उस्ताद धारदा ना कोई बंदा जी ते उस्ताद दी झड़कां भी सियाणियां पैंदियां.
2: हां जी
1: प्यारे वाले उस्ताद जी ते झड़कां मारदे सन बराबर
2: जो सिखाने दे टाइम ते उदों कोई
1: कोई कंप्रोमाइज़ नहीं
2: नो.
1: अच्छा
2: हां जी उदों तां जद क्लास विच है मैं फिर मैं कहना कि मेरे उस्ताद जी है जो अपने ते फिर
1: कभी तुसी इन्हां नूं कोई गीत सुनाया गा के सुनाया
2: नहीं है जी
1: हाले तक कोई गीत
2: नहीं. गीत नहीं शब्द मतलब जो सिखा फिर मैं
1: गुरबाणी कीर्तन करके सिखाया. गीतां नाल लोक गीतां नाल प्रेम
2: हाँ वो है मेनू
1: आंदे ने.
2: हाँ जी
0: बड़े वधिया गाने
1: समझ गए हो ना आप क्यों पूछ रहे हैं ना क्योंकि असीं सुनना चाहांगे ते परमजीत जी कोई लोक गीत साडे वास्ते भी होना चाहिए जेहड़े धारीवाल साहब नूं भी अज सुन पता लग जाए कि परमजीत कौर सुरीली जी
2: जी.

0: क्या बात है प्रोफेसर धारीवाल, असीं परमजीत जी नूं कहांगे अज साडे वेड़े परमजीत कौर दा रंग आया सखी सहेलियां सानूं देओ बधाई। बड़ा अच्छा लग रिहा सुरीली जोड़ी, बड़ा सुरीला माहौल। अच्छा घर च गुस्सा परमजीत जी किहनूं ज्यादा आंदा है ईमानदारी नाल?
1: खुद नी पता लगा जो प्यार मिलना ही प्यार
0: चीज बना के खवा दें।
1: कदी इन्हें मैं टोकया नहीं, कुछ भी खवा दे मैं कहना वेरी गुड, बहुत अच्छा, एप्रिशिएट एवरी टाइम, वी हैव टू एप्रिशिएट टू
0: यू। अच्छा अच्छा, ओके,
1: इज माय पावर।
0: अच्छा परमजीत जी, जदों इहनूं गुस्सा आउंदा है ते मन नूं थोड़ा जिहा दुख ज्यादा लगदा है कि हाय गुस्से हो गए, किस तरीके कोशिश करदे हुंदे हो मनाउण दी? फिर
2: मनाने की कोशिश करती है, मतलब प्यार ना इतनी तरह ते
0: कोई पसंद की चीज बना के खा देने हो?
2: हां जी।
0: और की पसंद है इन्हू खाने ज्यादा, मिठा पसंद है कि नमकीन पसंद है?
2: मिठा, के हलवा बना ली दा।
0: हलवा कितने ताई ता नहीं गुस्सा हो जाते चल बहाने ना हलवा ओदा तुसी छेती बना के नहीं दिंदे? अच्छा परमजीत जी, जदों कदी कोई शादियां व्याहां दा मौका आंदा है,
2: हां जी,
0: ठीक है ना प्रोफेसर साहब, कई बार बहुत रुझे हुंदे ने,
2: हां जी,
0: बट नैचुरली इन्हां कोल कोई स्टूडेंट्स विद्यार्थी सिखण भी आउंदे होंगे, उन्हां नूं भी टाइम देना पैंदा
2: है,
0: ते कदी होया इदां कि सारी प्लानिंग धरी धराई रह गई इन्हां दी वजह करके तुहाडे कोल जान ना हो पाया होवे ते जां तुहानूं कल्लियां नूं जाना पिया होवे?
2: ਕੱਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ
1: ਕੱਲੇ ਗਏ
0: ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ
2: ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ,
0: ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਨਹੀਂ?
2: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ
0: ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?
2: ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
2: ਹਾਂਜੀ,
0: ਇਹ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
1: ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਹੜੇ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए

0: अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53.50 रुपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Aung May Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahwar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries.

विखे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात करेंगे और राष्ट्र राजधानी के राय पिथौरा सभ्याचारक कॉम्पलैक्स में प्रकाश के कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष प्रदर्शनी भी देखेंगे। प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध नाल संबंधित एक पिपराहा अवशेषा के नाल नाल उन्हां नाल संबंधित महत्वपूर्ण पुरातन वस्तुओं का विखाला किया गया है। म्यांमार भारत दीआं गुआंढी पहलां एक्ट ईस्ट ते महासागर नीतियां दे संगम ते स्थित है। राष्ट्रपति ओम इन ऑनलाइन की भारत यात्रा नाल दोवां देशां विचकार बहुपक्षी संबंधां दे होर मजबूत होण दी उम्मीद है। 10 राज्यां तों राज्यसभा दीआं 24 सीटां लई 2 सालां च होने वाली चोणों लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटा, झारखंड में 2 सीटा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट लिए इस महीने 18 तरीक न वोटा पैणगियां। साबका प्रधानमंत्री JDS नेता एससी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह राज्यसभा में विरोधी धिर के नेता और कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें मैंबरों में शामिल ने जो इस महीने अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट लिए राज्यसभा सिमनी चोण लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। ये सीटा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु तो AIADMK के संसद मैंबर CV शनमुगम वालों खाली की गई ने जो हाल ही में राज विधानसभा चुने गए सन। ओडिशा तो BJD संसद मैंबर देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दे दिता सी। वोटिंग इस महीने की 18 तरीक नू होएगी। वोटा की गिनती उसे दिन की जाएगी। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का पसार अच कोलकाता दी लोक भवन विखे हुए सहुं चुक समागम विच 35 नवे मंत्रियों की नियुक्ति नाल होया। राज्यपाल RN रवि ने मंत्री परिषद के नवे मैंबरों नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखण की सहुं चुकाई। मुख्यमंत्री सुविंदर अधिकारी ते सीनियर आगू इस समारोह विच मौजूद सन। नवे नियुक्त मंत्रियों नूं विभागां दी वंड दा ऐलान बाद विच कीते जाण दी उम्मीद है। अज मंत्री वजों सहुं चुकण वाले मैंबरां विच स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस राय, शंकर कोच ते होर शामिल ने। नवे मंत्री राज दे वख-वख खेत्रां दी नुमाइंदगी करदे ने ते उन्हां विच तजर्बेकार विधायकां दे नाल नाल पहली वार मंत्री बने मैंबर भी शामिल ने। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शलाघा करते हुए कहा कि इस योजना ने बिना किसी गरंटी के कर्जे, माली समावेश और विकास लिए नवे मौके खोल के लखां रेड़ी पटड़ी वाले दे जीवन के पद्धर नूं बेहतर बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सत्कार ते शक्तिकरण ते आधारित है। उन्होंने लाभपात्रियों नूं बधाई देते हुए कहा कि उन्हां दा दृढ़ इरादा ते उद्यमशीलता देश की आर्थिकता नूं लगातार मजबूत कर रहे ने। साडे पत्रकार ने खबर दिती है कि 2020 विच इस योजना की शुरुआत तो बाद 1,12,00,000 तो वध खर्चे दिते गए ने। एक खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। स्रोतियां नूं सूचित किया जाता है कि आकाशवाणी का शामी 7:30 तो 7:40 तक प्रसारित होने वाला खबरां का राष्ट्रीय बुलेटिन आज 1 जून 2026 तो 21 जून 2026 तक शामी 7:00 तो 7:10 तक प्रसारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विच 5 नवे जज नियुक्त किए गए ने। इस नाल चीफ जस्टिस समेत जजा की कुल गिणती 37 हो गई है। कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया कि राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस नाल सलाह मशवरा करन तो बाद सुप्रीम कोर्ट विच 5 नवे जज नियुक्त किए ने। कानून मंत्रालय वालों जारी एक नोटिफिकेशन मुताबिक पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, बंबे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली नूं तरक्की दित्ती गई है। सीनियर वकील वेंकिता सुब्रमणी मोना नूं भी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने कानून विच सोध करदे हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया सी। इस तहत चीफ जस्टिस नूं छड्ड के सुप्रीम कोर्ट विच जजा दी मंजूरशुदा गिणती 33 तों वधा के 37 कर दित्ती गई है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौता CEPA आज तो लागू हो गया है। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोवां देशां विचकार आर्थिक अते रणनीतिक संबंधां नूं होर मजबूत करेगा। एक रोजाना राष्ट्रीय अखबार विच प्रकाशित एक लेख विच श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नवे बाजार खोलेगा, बरामद वधाएगा ते निवेश विच वाधा करेगा। श्री गोयल ने कहा कि इस नाल रोजगार विच भी वाधा होएगा ते विद्या

0: म्यांमार के सदर ने म्यांमार भारत कारोबारी फोरम से भी खिताब किया था। वो भारत के 5 रोज़ा दौरे के तहत हफ्ते के रोज़ बिहार के गया पहुंचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कारोबारियों और सनअतकारों से बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात देखने जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी के राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने का भी प्रोग्राम है। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाकियात को रखा गया है और उसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीज़ें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरक़ी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसी के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ऊ मिन ऑंगलिंग के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखिस ताल्लुकात के मजीद मुस्तकम होने का इम्कान है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: भारत ओमान जामे इख्तसादी शराकतदारी मुआहदा सेपा आज से नाफिज हो गया है। कॉमर्स और तजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तसादी और कलीदी राबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहदे से खासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और MSME इदारों को फायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी। बरामदात को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी रागिब होगी और रोजगार के मौके पैदा होने में तेजी आएगी। भारत के ओमान के साथ गहरे इक्तसादी और अवाम से अवाम के दरमियान रबते हैं, जहाँ तकरीबन 7 लाख भारतीय आबाद हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ओमान में आबाद भारतीय शहरी सालाना $2 अरब की रकम अपने घरों को भेजते हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं। 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर 2 साल बाद होने वाले इस चुनाव के तहत पोलिंग इस महीने की 18 तारीख को होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। साबिक वजीर आजम और JDS के रहनुमा HD देवेगौड़ा, मरकजी वजीर और BJP के लीडर जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनकी रुकनीत की मुद्दत इस महीने मुकम्मल हो रही है। होटलों, रेस्तरां और दीगर कारोबारी इदारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 4 बड़े शहरों में 42 रुपये से लेकर 53.50 रुपये का इजाफा किया गया है। घरेलू LPG सिलेंडर की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये का इजाफा किया गया है और अब ये 3,113.50 रुपये का मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत 43.50 रुपये बढ़ गई है और वहां कमर्शियल सिलेंडर के लिए 3,067.50 रुपये देने होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर RN रवि ने कोलकाता में लोकभवन में वजारती कौंसिल के नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजुर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का ओहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। सामान और खिदमत टैक्स GST की मजमूई वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और ये 1,94,000 करोड़ रुपये से तजावज़ कर गई। सामान और खिदमत की फराहमी में बेहतरी, नीज दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी 1,88,000 करोड़ रुपये थी। रेहड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मस्कूरा स्कीम से पिछले 6 साल में लाखों रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज हासिल करने और अपनी रोजी रोटी को बरकरार रखने में सहूलत हुई है। मस्कूरा स्कीम की सताइश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसान कर्जों की फराहमी, माली शमूलियत और तरक्की के लिए नए मौकों को यकीनी बनाकर PM स्वनिधि स्कीम से बेशुमार रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदल गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मस्कूरा स्कीम के तहत सूद में सब्सिडी और कर्ज गारंटी मदद के साथ 3 मरहलों में

0: 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए के कर्जे फराहम किए जाते हैं। इस पहल से मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा मुतालिका अफराद को फायदा हुआ है। मस्कूरा स्कीम के तहत 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कर्जे फराहम किए गए हैं। इस स्कीम के तहत 55 लाख से ज्यादा अफराद डिजिटल तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। मजमूई तौर पर मुस्तफीद होने वाले अफराद ने 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 8,96,000 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत मुतालिका अफराद को डिजिटल कैश बैक तरगीबात और सूद में रियायत के जरिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए भी मौसूल हुए हैं। स्कीम की मुद्दत मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शमीम इरफान।
1: अमरीका ने खत्म हफ्ता पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज़ पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैन अल-अक़वामी आबी हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हालिया हमलों से जंगबंदी के कमज़ोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लितानी दरिया से भी आगे तक लिबनान में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमू एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसमें दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ਹੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਫੁਕਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने

0: मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
1: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम

0: में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
2: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम

कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इसे। और अब कार्यक्रम उन्नत किसान में स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं हूँ आपके साथ आरती।
1: और मैं हूँ आपके साथ राहुल।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे किसान मित्रों की अगर हम बात करें तो जो धान की फसल होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में उसे उगाया जाता है। बहुत से किसान इस खेती के साथ जुड़े होते हैं, तो धान से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, किस तरह से खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्में होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, आज इसी विषय पर हम लेकर आए हैं, बातें होने वाली हैं।
1: क्योंकि आज का विषय है धान की उन्नत किस्में, नर्सरी और पोषक तत्व प्रबंधन। और जैसा कि आपने धान की बात की, महत्वपूर्ण फसल है और बहुत बड़े इलाके में इसकी जो है इसको उगाया जाता है, तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत गौरवान्वित करने वाला होगा कि वर्तमान समय में भारत जो है धान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। बहरहाल, हम आपको ये भी बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे जी। आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी, मेरी तरफ से भी सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार।
0: और साथ ही आपको बता दें, फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप फोन करके धान से जुड़ी जो भी चीज़ है, अगर आपको खेती करने में कोई समस्या आ रही है या आप शुरू करना चाहते हैं या इस समय पे आपको क्या करना चाहिए धान से जुड़ा हुआ अपने खेतों में, इस विषय पे कोई पूछताछ करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं 011 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद आप नंबर डायल करें 2342108 1। एक और फ़ोन नंबर है
1: 2342108 3।
0: जी बिल्कुल। और राहुल, वैसे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत अपने विषय पर आए, इससे पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है।
1: बिल्कुल, आज है विश्व दुग्ध दिवस
0: जी,
1: और वर्ल्ड मिल्क डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम क्या दुनिया कर रही है। और मैं चूंकि यहाँ पर डॉक्टर यशवीर जी भी हमारे साथ हैं, सर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे आज का

0: दिन कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और मैं सर जनरल स्टूडेंट जब हम पढ़ते थे जनरल नॉलेज, तो एक हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए। तो वो मुझे बस केवल याद है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम मुझे याद आ रहा है उस जीके के क्वेश्चन की वजह से, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन भारत के लिए।
1: देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो थे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया जाना जाता है
0: जी,
1: उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत रिवोल्यूशन किया
0: जी।
1: और आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन भी करते हैं
0: जी।
1: दोनों तरीके से ही जो है, मतलब वो हमारा इम्पोर्टेंस है दूध की। और इस तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मिल्क के जो
2: मीडियो वेब 347.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स, टीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम दे विच आओ सुखविंदर सिंह दे गाए लोक गीत सुनदे आं।

जी बिल्कुल, एमी विर्क दी खूबसूरत आवाज़ इस प्रोग्राम दी शुरुआत कर कीती है जी इस गीत दे नाल। ते लो जी हुन शुरुआत करदे हां तुहाडे खतां दे राहीं। लिख रहे ने पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता कोई भी गीत सुनना चाहते ने। पंचकुला सैक्टर 9 तो लिख रहे ने आशुचुक, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, राधे ते भाविक। पटेल नगर मलौट पंजाब तो लिख रहे ने डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप ते बेबी आरजू। गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछो कैंचियां तो लिख रहे ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करण वीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन एकम दमन ते अभिजोत। पेन कुणियाणा तो लिख रहे ने पोला स्वाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, गुरताज, अभिजोत, गुरतेश्वर, रहमत जोत ते दोस्त ने इना दे निहल, बंतेज, दीपा, मलकीत ते नाल इना दे विनोद काठपाल। सुन चाहते ने कोई भी गीत ते कोई भी गीतों में लैके आए हैं जी मनजीत शौकी की आवाज़ में। प्यारा जगीत सुन दें।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते लो जी चिट्ठियां पढ़ लैने आ जी। बड़े ही बेसब्री दे नाल इंतजार हो रहा हुंदा है। लिख रहे ने आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना ते निमान शर्मा। कोई भी गीत सुनना चाहते ने? गिदड़बाह तो लिख रहे ने मनजीत तनेजा, परवीन पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी। आजाद नगर बक्सर हरिद्वार तो लिख रहे ने ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते महराज जहां। पिंड नथाणा तो लिख रहे ने हरजिंदर चिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। कोई भी गीत सुनना चाहते ने? डब वाली तो रजिंदर नारंग, अंजू ते मोहित नारंग। कोई भी गीत सुनना चाहते ने? ते कोई भी गीतां विच चुन के लैके आई थोड़े वास्ते बिलाल सईद दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

आई है, किसकी आई है? तजनिया जी। लिख रहे नहीं, उत्तर प्रदेश तो तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन ते अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी तो लिख रहे ने द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार ते जविंद्र कुमार ते सारा परिवार। हाजीपुर तो लिख रहे ने राज, बिमला, शारदा, के कौंडल, रजनीश कौंडल, आर के ते सारे पिंड वाले। वाह जी वाह, हुण पिंड वाले ले लेने सारे। अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो लिख रहे ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, गुरनूर, हरविंदर, राजा सिंह, कुलविंदर कौर मान ते के एस मान। बहुत ज़्यादा माण है जी सानू इन्हां ते, ते इन्ना टाइम ला के जो है तुसी जो है साडे लई या अपने लई खत लिख दिओ ते पूरा काम भी कर दिओ, कर दे बाहर दे ते पूरा टाइम निकाल के 3 to 4 यानी कि दोपहर दे 3 to 4 तुसी सुन दे हो जी प्रोग्राम DTS ते या न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। पुरानी मंडी मुलापुर तो लिख रहे ने रजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक गौतम, रसगुल्ला ते नगीना जैन ते सारा परिवार। पुरानी मंडी मुलापुर तो कृष्ण गोपाल शर्मा, बीटू जैन, टीटू जैन ते जे बी राव ते सुनना चाहते ने अमरिंदर गिल की आवाज़ में कोई भी गीत ते सुन दें जी इस प्यारे जगीत नूं। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

कुमार ते नरेश कुमार शर्मा ते इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते कईआं ने ते कोई भी गीत लिखिआ सी ते वाइफ दी गल चली सी ना ते इही गल हुंदी हर घर विच सुणदे आ जी इस गीत नूं बहुत ही प्यारा जिहा।

नज़र नज़र का फ़र्क होता है जनाब, किसी को हुस्न तो किसी को सिर्फ सादगी भाती है। खुश नसीब होते हैं वो लोग इस दुनिया में जिन्हें अपनी मोहब्बत की आंखों में जन्नत नज़र आती है।

तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी समग्र बाणी विच प्रभु दी सिफतो सलाह है, उस्तत है। सर्ब कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच बेनती है, उस दे गुणा दा वर्णन है। प्रभु ते जन दा रिश्ता प्रभु ते सेवक दे रिश्ते वांग है, क्योंकि सच्ची सेवा प्रभु दे हुकम अनुसार उही जन कर सकते हैं जिड़े प्रभु दे हुकम मुताबक चलते ने। इतना ही संभव हुंदा है जदों ओ बेअंत गुणा दे स्वामी सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच जोदड़ी करते हैं। राग वढ़हंस विच उचारित शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दासा भाव विच आके ए अरजोई करते हैं। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। सरवण करदे हां भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए

सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उनदे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दे हुकम नाल, अर्थात एक कवाओ दे नाल सृष्टि दा पसार हो गया। गुरबाणी विच बयानिया गया है,

दाना साहेब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। इस शब्द का गायन किया सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के

0: आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण एक विशेष सूचना, असी अपने स्रोतियां नूं दस दईए कि अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक रोज़ शाम 7:10 तो लैके 10:45 तक तुसी साडे दिल्ली केंद्र तों एक विशेष प्रोग्राम सुनिया करोगे, गरीब कल्याण। इस करके जो पंजाबी खबरां दा बुलेटिन तुसी रोज़ शाम 7:30 सुणदे हो, ओ बुलेटिन अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक शाम 7 सुनिया करोगे। ते लोहन सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच कम दियां गल्लां, मौसम दा हाल, कल दे प्रोग्राम ते लड़ीवार नाटक देस होया पराया दी नौवीं कड़ी सुनाई जाएगी।

7:45 ते प्रोग्राम विविधा विच हिंदी वार्ता सुनोगे। भारतीय संस्कृति की विश्व को देन योग, वार्ताकार होंगे डॉक्टर नीलम जुल्का। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे पंजाबी नाटक तरकीब। भाग लैण वाले कलाकार होंगे हेमराज शर्मा, सुरेंद्र संधु, नीलिमा अरोड़ा ते हरदीप पनेसर। रात 10:02 सुनोगे हिंदी कवि गोष्ठी। भाग लेने वाले कवि होंगे सागर सूद, कुसुम खुशबू, रुपिंदर कौर ते मीनू सुखमन।

रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। इस साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। आओ हुण सुणदे हां इक समूह गाना।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। तुहानू एक बार फिर याद करवा दिए कि जिहड़ा पंजाबी खबरां दा बुलेटिन तुसी शाम 7:30 बजे सुनते सी, अज तो वह 7 बजे प्रसारित होएगा। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी 6:20 ते सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते म्यांमार दे राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन ने नवी दिल्ली विच गलबात कीती है। दोवां नेतावां ने दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन बारे चर्चा कीती। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले तो देशव्यापी खेत बचाओ मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने किसानों नूं रसायणिक खादों की वरतों सीमित करन की अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की मुड़ प्रीख्या मौजूदा पेन ते पेपर फॉरमेट की बजाय कंप्यूटर आधारित प्रीख्या वजों करवाने की मांग करने वाली एक पटीशन खारज कर दिता है। मई महीने वस्तु ते सेवा टैक्स का कुल संग्रह 3.2% वध के 1,94,000 करोड़ रुपए तो वध हो गया है। तो भारत ने होंगकोंग हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप में सोने के 10 तमगे समेत कुल 19 तमगे जीते ने। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन ने नवी दिल्ली में दुवल्ली गलबात की। दोवां नेतावां ने इतिहासक और सभ्यागत संबंधों को होर मजबूत करने बारे चर्चा की। गलबात दौरान दोहां देशों विचकार सुरक्षा ते संपर्क समेत सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिचरवार को भारत के 5 दिन दौरे पर बिहार के गया पहुंचे सन। उन्होंने नाल एक उच्च पदरी वफद भी है जिस विच कई कैबिनेट मंत्री सीनियर अधिकारी ते कारोबारी आगू शामिल ने। वो कल मुंबई भी जाएंगे जिथे वो व्यापार ते उद्योग के आगुओं नाल गलबात करनगे। गलबात तो बाद विदेश सकत्र विक्रम मिसरी ने नवी दिल्ली में पत्रकारों को दसाया कि दोवां धिरां ने व्यापार ते निवेश विकास सहयोग सेहत सिक्ख्या ते ऊर्जा के खेत्रां विच नेड़ले सहयोग नूं उत्साहित करने विच दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि दोवां धिरां ने लोगों तो लोगों के संपर्क की महत्ता ते जोर दिता है। विदेश सकत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की प्रभुसत्ता ते खेतरी अखंडता लई भारत के समर्थन की पुष्टि की है। दोवां धिरां ने अपने सुरक्षा हितों विरुद्ध गतिविधियों लई इलाके की दुर्वरतों नूं रोकने की अहमियत ते भी जोर दिता है। श्री मिसरी ने कहा कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने अपना भरोसा दोहराया कि म्यांमार के इलाके नूं भारत के सुरक्षा हितों विरुद्ध वरतण की आग्या नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सांझी बोधी विरासत ते सदियां पुराने लोगों तो लोगों के संबंध भारत म्यांमार संबंधों एक विलखण पछाण देंदे ने। राष्ट्रपति ने कहा कि म्यांमार दक्षण पूर्वी एशिया लई भारत का प्रवेश द्वार है। उन्होंने म्यांमार च शांति और सुलह सफाई लई भारत के दृढ़ समर्थन का भी प्रगटावा किया। भारत ते आस्ट्रेलिया ने एक आजाद खुला शांतिपूर्ण स्थिर ते खुशहाल हिंद प्रशांत खेत्र बनाई रखने लई खेतरी भाईवाला नाल सहयोग वधाउण दी अहमियत दी पुष्टि कीती है। नवी दिल्ली विच भारत आस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूजी गलबात दौरान दोहां देशों ने समुद्री ते हवाई उड़ाना की आज़ादी की अहमियत ते जोर दिता ते अंतरराष्ट्रीय कानून अनुसार खेत्र विच समुद्र के निर्विघन व्यापार ते होर जायज़ वरतों लई अपना मजबूत समर्थन प्रगट किया। मीटिंग की सह प्रधानगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग दौरान दोहां नेतावां ने दुवल्ले संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया और पिछले साल अक्तूबर में पहले गेड़ की गलबात तो बाद वधे हुए सलाह मशवरे और सहयोग से चर्चा की। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया पिंड में देशव्यापी खेत बचाओ मुहिम की शुरुआत की। यह मुहिम एक महीने तक चलेगी। इसका उद्देश खेतीबाड़ी वाली जमीन की रक्षा करना और किसानों विज्ञानक खेती अपनाने उत्साहित करना है। किसानों संबोधन करदा श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ मुहिम का उद्देश मिट्टी और खेतीबाड़ी वाली जमीन की राखी करना है। उन्होंने किसानों रसायनिक खादों की वरतों सीमित करने की अपील की।
1: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
0: खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियां, भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र ते चुने हुए प्रतिनिधि इस मुहिम विच हिस्सा लैणगे। किसानों मिट्टी परख, मिट्टी सेहत कार्ड, कुदरती खेती, खादों की संतुलित वरतों और पानी की संभाल संबंधी तकनीकों बारे जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने नकली खादा, बीजा ते कीटनाशकों की पछाण करना भी सिखाया जाएगा। मुहिम दौरान किसानों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रैडिट कार्ड और खेतीबाड़ी मशीनीकरण प्रोग्रामा समेत सरकारी योजनावां का लाभ लैण विच भी मदद की जाएगी।

0: semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, while the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes. Yeah,
1: absolutely, Shubham. Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL हाउस होल्डर को खास करके उज्ज्वला योजना ने बेनिफिट पहुंचाया है रूरल वेमेन फोक को, खास करके उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का। टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे, खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था। जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें, तो
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम

0: में हम आगे बढ़ें, शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डिफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
1: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी
1: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई। लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है, और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में। बहुत सारे इलाकों में अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
0: Absolutely, Shubham. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubham also mentioned about, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back, or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, it again revolutionized, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is, how significant is this?
2: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting-edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS, New Delhi, or in the north part of the country, they had to go to PGI Chandigarh. In south, they used to throng Jipmer, Puducherry. These are institutes of excellence in health. Mm-hmm. Everybody would have to rush to these institutions because there was no healthcare available next door. See, the concept of healthcare delivery becomes important and successful if you take healthcare services where people are living. So the entire infrastructure under the Ayushman Bharat scheme was conceived around these pillars. The first thing was that you set up health and wellness centers, which are now known by the name of Arogya Mandir. Different states of the country have it. Some states which did not have it, for instance, West Bengal

0: 10 करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
1: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है,
0: जी
1: ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि
0: जी
1: वो
0: जी
1: सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
0: इवन इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
1: बिल्कुल, गिग वर्कर्स की भी
0: यस
1: स्वनिधि में वो भी काफ़ी हद तक कवर होते हैं। तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं।
0: जी
1: तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है।
0: जी
1: और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है
0: जी
1: वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
0: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वेमेन फोक, लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
1: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस
0: जी
1: छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी
0: जी
1: कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है
0: जी जी
1: जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस
0: जी
1: वजह
0: जी
1: से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात
0: जी
1: की, और
0: जी
1: अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की।
0: महिलाओं के
1: ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज़ में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है, और चाइना का 35.7 है, और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है

0: दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी
1: जी।
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुणे तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो विशेष प्रोग्राम सुन रहे सी। अपने स्रोतियां नूं असी एक बार फिर याद करवा दीए कि अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक साडे दिल्ली केंद्र तो एक विशेष प्रोग्राम 7:10 तो लैके 7:45 तक प्रसारित होएगा, जिदे करके जिहड़ी तुसी पंजाबी खबरां रोज़ 7:30 सुणदे सी ओह हुण 7 प्रसारित होण करगियां। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन स्टेट

0: फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। आहुन प्रोग्राम विविधा तहत सुनदिया वार्ता भारतीय संस्कृति की विश्व को देन योग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नीलम जुल्का।
2: योग भारतीय संस्कृति की विश्व को दी गई एक ऐसी महान देन है जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की है। यह केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की एक प्राचीन जीवन शैली और विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। इसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को योग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है। जब हम कर्मों के परिणामों की चिंता किए बगैर पूरी निष्ठा और संभाव से अपना काम करते हैं तो वही कार्य कला या कौशल बन जाता है। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। इस तरह योग एक ऐसी साधना पद्धति है जिससे स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति होती है। योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों एवं दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है और इसके अष्टांग अर्थात 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग वशिष्ठ के अनुसार योग वह युक्ति है जिसके द्वारा संसार सागर से पार पाया जा सकता है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने का कार्य करता है। भारत ने अपनी आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच से योग के माध्यम से दुनिया को अमूल्य धरोहर प्रदान की है। भारत ने शून्य की तरह ही विश्व को योग रूपी अमूल्य उपहार दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां एवं मोहरें भारत में योग के महत्व को प्रतिपादित करती हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक और उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता तथा बौद्ध और जैन परंपरा में योग का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। प्राचीन काल से भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता बहुत समृद्ध रही है। विश्व के कई भागों में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। देश के महर्षियों द्वारा योग का भी वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो मनुष्य के भीतर अंतर्मन की शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है और उसकी चिंतन मनन करने की शक्ति को भी अभिवृद्धि प्रदान करता है। आज योग वैश्विक स्तर पर योग चिकित्सा का विषय बन चुका है। योग से जीवन का तनाव, अवसाद समाप्त कर कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। इन्हीं गुणों को देखते हुए संपूर्ण विश्व में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आज दुनिया के सभी देश योग को किसी न किसी रूप में अपना रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों के अतिरिक्त इस्लामिक देश जैसे ईरान, पाकिस्तान और अरब आदि कई देश योग के महत्व को स्वीकार कर इसे अपना रहे हैं। आज संपूर्ण मानव जाति आधुनिक जीवन शैली के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। शारीरिक क्रियाशीलता के अभाव के कारण लोग बीमारी, निराशा, मनोविकार और अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं। युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मबोध की कमी दिखाई पड़ रही है, पर योग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सही कर स्वास्थ्य प्रदान करता है।

0: योग दुनिया में व्याप्त निराशा, तनाव और चिंतन को दूर करने के साथ साथ वैश्विक एकता को बढ़ावा देता है। योग चैतन्यता की स्थिति में सुधार कर वैश्विक स्तर पर शांति, एकता और अखंडता की भावना पैदा करता है। योग सभी प्राणियों को एक साथ जोड़ने और सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। योग आत्मविश्वास में अभिवृद्धि कर लक्ष्य निर्धारण में सहायता करता है। योग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भारतीय संस्कृति की महान देन योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार और महत्व देने के लिए 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति को प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आएं एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में हम काम करते हैं। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। भारत में 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर पूरे जोर शोर से मनाया गया। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर मनाया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री और गणमान्य लोगों सहित लगभग 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 35 मिनट तक का 21 योग साधनों का योग आसनों का प्रदर्शन किया। योग दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा पूरे उत्साह से मनाया गया। राजपथ पर हुए समारोह ने दो गिनीज रिकॉर्ड भी बनाए। पहला, सबसे बड़ी योग क्लास 35,985 लोगों के साथ, और दूसरा, 84 देशों के द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने के लिए बहुत तैयारियां की गईं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है, क्योंकि योग में जन कल्याण की भावना निहित है। यह विविधता में एकता से मानव मन के भीतर मानव एकता की भावना को उत्पन्न कर लोगों में संगठित बल प्रदान करता है, जिससे सब लोगों में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिना अर्थात सभी सुखी रहें इसकी भावना उत्पन्न करता है। इसलिए प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल ने सही कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का आधार योग माना गया है, जो इसे चिरंतन रूप देता है।
1: हुणे तुसी हिंदी वार्ता सुन रहे सी भारतीय संस्कृति की विश्व को देन योग। वार्ताकार सन डॉक्टर नीलम जुलका, आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्रे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

तो आज आगाज करते हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी ज्यादा दूसरा नाम है मेहनत, क्योंकि सानू जिंदगी विच मेहनत करना ही अगे बढ़ना पैंदा है, क्योंकि मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती, ये एक ना एक दिन जरूर रंग लियांदी है ते सानू फल जरूर दिंदी है, क्योंकि जिंदगी विच वड्डियां मंजिलां उही पांदे ने जो कदे हार नहीं मनदे, मेहनत करदे हुए अगे ही वधदे जांदे है, क्योंकि हर दिन एक नवा मौका लैके आंदा है और नवे मौके नूं मेहनत नाल ही असी जित सकते हैं, कुछ ना कुछ पा सकते हैं, क्योंकि मुश्किलां इंसान नूं कमजोर नहीं करदियां, मजबूत बनाउंदियां ने, और मजबूत बनने वास्ते सानूं अपने आप मेहनत करके अगे वधना पैंदा है, क्योंकि जिंदगी दा नाम मेहनत है, और अपने सुपने नूं पूरा करने लई मेहनत करो, कामयाबी तुहाडे कदम चुमेगी, क्योंकि धीरज ते मेहनत हर औखे राह नूं आसान बना देते ने। और जिंदगी दा दूसरा नाम ते संघर्ष भी है ना, क्योंकि जिंदगी दी असली खूबसूरती तां संघर्ष विच ही लुकी हुंदी है। जी अज मेहनत करते हैं तो कल सानू फल जरूर मिलेगा, हौसला रखो, हनेरी रात तो बाद सवेर जरूर आती है। तो दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीन का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के नाल, जिसनों गाया है अलका याग्निक, साधना सरगम ते सपना मुखर्जी ने, फिल्म त्रिदेव तों।

0: प्रश्न हैं, तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। ते प्रोग्राम विच अगले गीत तो पहला एक जरूरी सूचना। असी अपने श्रोतियां नूं दस दईए कि अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक रोज़ शाम 7:10 तो लैके 7:45 तक तुसीं साडे दिल्ली केंद्र तों एक विशेष प्रोग्राम सुनिया करोगे, गरीब कल्याण। इस करके जो पंजाबी खबरां दा बुलेटिन तुसीं रोज़ शाम 7:30 सुणदे सी, ओह बुलेटिन अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक शाम 7 सुनिया करोगे। तो दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीना नूं अगे वधाउने आ। तो प्रोग्राम विच अगला गीत लता मंगेशकर ते SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ च फिल्म एक दूजे के लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, और जिंदगी विच कामयाब होना बहुत जरूरी है। कामयाबी हर एक लिए बहुत जरूरी है, और इस कामयाबी दे ताले दी जड़ी चाबी है वो है मेहनत। जी हाँ, कड़ी मेहनत इस ताले नू खोल दिंदी है और सारियां राह आसान कर दिंदी है। और जिंदगी विच उच्चा उच्चा उड़ना है तो हौसले तो मजबूत होने ही चाहिए ना। और जिंदगी दी राह चलते चलते अगर कभी डिग जाइए, कभी कोई रुकावट आ जाए, तो वो गलत नहीं, डिगना गलत नहीं है, पर डिग के ना उठना वो गलत है। क्योंकि मंजिल उन्होंने मिलती है जो सफर तो नहीं डरते, हमेशा चलते रहते, अगे वधते रहते हैं। क्योंकि हर छोटी कोशिश वड्डी कामयाबी दी नहीं हुंदी है। इस करके मेहनत ते हमेशा हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि जो तुसी किसे काम नू समा दिंदे हो, मेहनत दिंदे हो, ते ओ कदे धोखा नहीं दिंदे, ते अपने सपनियां नू पंख दिओ और सपने पूरे करन वास्ते हमेशा मेहनत करदे रहो। क्योंकि ओखे राह ही इंसान नू मजबूत बनांदे ने। जदों तक कोशिश जारी है, राह हार कदे नहीं हुंदी। कि जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक नवा सफा है, और उस नवे सफे नू पढ़ के मेहनत नाल कामयाबी वाल अगे वधदे रहना है। क्योंकि हौसले वाले लोग हालातों तो नहीं, हालात उन्हां नू याद रखते ने। ते दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना नू अगे वधाउने आ, ते अगला गीत प्रेम रोग फिल्म तो। इस गीत नू गाया लता मंगेशकर ते सुरेश वाडेकर ने।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो।

लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम दे गाए सनम बेवफा फिल्म दे इस गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम जिंदगी हसीन इत्थे खत्म करन दी दिओ इजाजत। हुण तो कुछ ही पहला विच यानी रात 9:15 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ @9 ते रात 9:15 बजे सुनोगे स्पॉट लाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति

0: इन ऑनलाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की

0: संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow.

मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 9:30 बज चुके ने। आओ हुण सुणदे हां पंजाबी नाटक तरकीब। भाग लैण वाले कलाकार ने हेमराज शर्मा, सुरिंदर संधू, नीलिमा अरोड़ा ते हरदीप पनेसर।

0: चलिए।
1: हाँ हाँ चलो।
0: कौन? लांग आओ, दरवाजा खुला। ये
1: तुरंत लग गया, कौन आ गया?
2: शुक्र है शुक्र है। पुत्र मैं तो घर ही भूल गया सा, पिंडा वालिया नू शहरा विच मुश्किल आई जांदी है बदोबदी।
0: पैरी पहना ताया जी।
2: ओ शुक्र है शुक्र है, जिंदा वसदा रह पुत्र।
1: पैरी पहनी है ताया जी।
2: जिंदी वसदी रहती है।
0: बैठो ताया जी।
2: बैठ जा पुत्र। अपने घर आके किन्ना चैन मिलता है। एक गली दा भुलेखा लग गया सी पुत्र, मेरी तो पादी बन गई। शुक्र है रब दा, फिर भी ठीक ठाक घर पहुंच गया।
0: लै भी सरोज, ताया जी वास्ते पिंडा वर्गी वधिया चाह बना के लिया।
1: हेलो, मैं हुणे लियानी है चाह।
2: कोई गल नहीं पुत्र, एडी काली वाली केड़ी गल है, मैं केड़ा वापस जाना है। पुत्र पिंड विच भी जी अक गया सी मेरा। हो अपना गुआंढी हुंदा सी ना बेला सी, हूँ 2-3 महीने हो गए ने, हो पूरा हो गया।
0: अच्छा, हाली तो उदी सेहत चंगी सी।
2: हाँ सेहत हाली तो चंगी सी, पर पाणा रब दा। सवेरे उठ के पाठ करदिया माला हाथ विच ही फड़ी रह गई, बस आ गया। ओहो बड़ा मोसी ओदा मेरे नाल, बस ओदे तो बाद पिंड विच मेरा जी नहीं लगा। मैं क्या, चलो शहर अपने पुत्र कोल ही चलदे आ।
1: मैं क्या, ए चाह ले जाओ आके।
0: आया
3: पै गया ही स्यापा।
1: क्यों, की हो गया?
3: ताया रहन आया इत्थे।
1: हैं, पर खातो?
3: बस आखदा है पिंड जी नहीं लगता हुण।
1: कर लो फिर अगां होके पैरी पहना, उदों तां पच के अगां होए सी। अके पैरी पहना ताया जी।
3: गल सुन, मेरे ते गुस्सा कानू कढ़ दियां, मैं तां उहनू पैरी पहना कहा सी, हुण जे अगों गल पै गया तां मैं की करां।
1: हाली तां मसां 6 महीने होए ने सस सहुरे नू मगरों लथिया, ते हुण ए।

0: भाई शरदू, गल सुन।
1: जी खन्ना साहिब बोलिए।
0: भाई वर्मा नहीं आया अजे तक, कोई एप्लीकेशन आनी है ओदी? ओ तां कदे लेट नहीं होया?
1: ना ही खन्ना साहिब, हम ना ही जानत। लीजिए वर्मा साहब आ गए रहन। वर्मा साहब आप ही का इंतजार हो ही रहा था।
0: की गल वर्मा, अज लेट हो गए?
2: ओ बह तां लैण दे यार, दस देना तेनू।
0: यार वर्मा, एडी खफा होण वाली केड़ी गल है? शरदू जाके दो कप चाह दे लिया।
1: जी
0: नहीं, कॉफी दे लिया। पहला वर्मा साहब का मूड ठीक करिए।
1: बहुत अच्छा साहिब।
0: हाँ दस की गल है, बड़ा मूड लटकाया है।
2: बड़ी मुश्किल च फस गए यार।
0: पता तो लगे, उंज तो सुख सांद है ना।
2: हाँ उंज तो सुख सांद है, पर यार अपने पिंडों शरीके चो ताया लगता है।
0: की होया उन्हों?
2: वो साढ़े को आ गया रहन वास्ते, बड़ी प्रॉब्लम बन गई, घरवाली वक्ख औखी होण डई आ।
0: आपे चला जाऊ वापस, एडी केड़ी गल आ।
2: नहीं उन्हें नहीं जाना, ओदी हुण इत्थे रहण दी सलाह है।
0: वाकई वाकई फिर ते समस्या बन गई।
2: हाँ यार कोई हल भी नहीं दिसदा, मूँह ओनू कह नहीं सकदे।
0: ये तो हुण ओनू पिंड वापस करन लई कोई ना कोई तरकीब लड़ाउणी पाऊ।
2: यार जरूर लड़ा कोई तरकीब।
0: कोई नहीं, सोच लैने हैं कोई तरकीब। लै शरदू कॉफी लैके आ गया, कॉफी पी के पहला अपने आप नू टिकाने ते कर।
1: लीजिए साहिब कॉफी।
0: कॉफी पी तू वर्मा, घबरा ना जरा भी, ये मसला हुण मेरे ते रहन दे, मैं आपे ही।
2: ओ चंगा भाई, हुणे मसला तू ही हल करना है।
0: हाँ कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम यार।

0: बड़ी अजीब जी लगती है, पर है 16 आने सच।
1: ओके
0: पहला दसो, तुसी भूतां प्रेतां या आत्मावां नूं मंदे जे?
1: ओ क्यों नहीं पुत्र, जिन्हां चीजां दा नां हुंदा है ओ जरूर हुंदियां ने।
0: ताया जी कहिंदे ने जिस किसे नूं भूत प्रेत दी छाया होवे, जे ओह इत्थे उच्ची सारी किसे मर गए वड्डे दा नां लै के आवाज़ मारे तां ओहदी आवाज़ उस्से तरह ही अगों मुड़ के आ जांदी है।
1: अच्छा
0: ताया जी तुसी भी मारो खां भला आवाज़।
1: ओ पुत्र ओ मैनू ले चलो, मैनू जाप जा। ओ
0: नहीं
1: जे
0: ताया जी, एक बारी फिर आवाज मार के वेखो।
1: ओ नहीं पुत्र, आपा चलिए
0: नहीं
1: इथों।
0: नहीं तुसी एक बारी होर आवाज मार के तो वेखो, फिर आपां चलांगे।
1: अच्छा, जे तू कहना था बशंबरदास शुक्र है ओ पुत्र, मैनू ले चल इथों, मैं इस शहर विच नहीं रहना। ओए मैं तां हुणे जाके वरमे नू कहूंगा, मैनू अज ही पिंड वाली बस ते बिठा देवे। मैं इत्थे नहीं रह सकदा, ओए मैं इत्थे

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। तेलों सुनो कवि गोष्ठी, भाग लैण वाले कवि होणगे सागर सूद, कुसुम खुशबू, रुपिंदर कौर ते मीनू सुखमन।

0: दोस्तों आइए आज इस महफिल में आपके गमों को दूर करने के लिए जो कवि, जो हीरे, जो मोती पिरोकर हम लाए हैं, मैं पहले उनके नाम से आपसे मिला दूं। हमारे साथ हैं कुसुम खुशबू जी जो धारीवाल से हमारे बीच में हैं, और रुपिंदर कौर जी जो टांडा से हमारे बीच में हैं, और डॉक्टर मीनू सुखमन जो रोपड़ से हमारे बीच में हैं, और मैं स्वयं सागर सूद पटियाला से आपके लिए हाजिर हूँ। तो आपके और इन कवियों के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कवि को निमंत्रण देने जा रहा हूँ, हमारे बीच में बहुत ही प्यारी आवाज़ की मलिका, कोयल जैसी आवाज़ वाली कुसुम खुशबू जी हैं जो धारीवाल से हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गज़ल तरन्नुम में अगर कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुसुम खुशबू जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सागर सूद साहब। मेरी गज़ल के चंद अशआर।
0: जी
1: हम तुम्हारे ख्वाब में आ जाएं
0: आ हा हा
1: क्या,
0: हा वाह वाह वाह वाह।

0: क्या वाह
1: बहुत अच्छे, वाह वाह।
0: एक जरा सी बात पर घबराए क्या,
1: बहुत बढ़िया कुसुम।
0: और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगी
1: जी।
0: रो दिए जलती शमा को देख कर।
1: क्या मिश्रा, वाह वाह।

0: से तुम्हें मिलवाए।
1: क्या बात
0: है। इन नजारों से तुम्हें मिलवाए क्या।
2: वाह जी वाह।
1: और गजल का आखिरी शेर है
2: जी,
0: बे

0: दिया
1: अरे वाह वाह वाह कुसुम, वाह वाह वाह वाह।
0: उसने क्या क्या कह दिया इठलाए क्या,
1: जियो कुसुम जियो, वाह वाह।

0: वाह
1: वाह
0: धन्यवाद,
1: कुसुम, बहुत बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बढ़िया।
0: धन्यवाद सुंदर, बहुत बहुत
1: आपने
0: धन्यवाद
1: इतनी
0: सुंदर।
1: खूबसूरत आवाज़ में कुसुम खुशबू के ज़रिए ये गज़ल सुनी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन कवियों को ज़्यादा सुना जाए। मुझे कुछ याद आ रहा है कुसुम की गज़ल सुनने के बाद कि कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, कि कब कहा मैंने
0: मैंने
1: मुझको
0: मुझको
1: खुदा
0: खुदा
1: चाहिए,
0: चाहिए,
1: बस वफाओं के बदले वफा
0: वफा
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: क्या
0: वाह
1: और
0: बात
1: मिल
0: है,
1: गए हो मुझे तुम सदा के लिए,
0: क्या कहने
1: इससे
0: का, क्या
1: बढ़कर मुझे और क्या
0: बात है,
1: चाहिए।
0: क्या
1: बहुत
0: बात
1: बहुत
0: है, क्या
1: शुक्रिया।
0: बात है।
1: और इनके बाद मैं जिस आवाज़ को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो रुपिंदर कौर जी हैं, जो टांडा से हमारे बीच में हैं, LPU में हैं वो। और रुपिंदर जी अपनी रचना लेकर आपके बीच
0: तो
1: में।
0: कविता का नाम है उम्मीद। जिंदगी में लड़ना लड़ते रहना, जिंदगी में लड़ना
1: लड़ते
0: लड़ते
1: रहना
0: रहना, चाहे थक जाओ हालातों से तुम,
1: जी,
0: क्या उम्मीद का दामन रखना थामे, चाहे थक जाओ
1: क्या
0: हालातों
1: बात
0: से
1: बहुत
0: तुम,
1: अच्छे, वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह।
0: बहुत बढ़िया। चाहे घिरे हो तूफानों से, चाहे घिरे हो तूफानों
1: तूफानों
0: से
1: से
0: तुम, छोड़ जाए चाहे तुम्हारे अपने सब,
1: क्या कहें,
0: मगर फिर भी चलना चलते रहना तुम,
1: वाह वाह क्या
0: फिर भी
1: पॉजिटिविटी है,
0: चलना
1: चलते रहना
0: चलते
1: तुम।
0: रहना तुम, थामे उम्मीद का हाथ। तुम हो मनुष्य है
1: जी
0: लड़ना तुम्हारा काम,
2: क्या बात है, क्या
0: तुम
2: बात
0: हो
2: है,
0: मनुष्य है
2: है
0: लड़ना
2: लड़ना
0: तुम्हारा
2: तुम्हारा
0: काम,
2: काम,
0: जब अंधेरों से घिरी मिले राहें तुम्हें हर बार,
2: क्या बात है, क्या
0: जब
2: बात है,
0: अंधेरों
2: अंधेरों
0: से
1: से घिरी
0: घिरी
1: मिले
0: मिले
1: राहें
0: राहें तुम्हें
2: तुम्हें
0: हर
1: हर
0: बार,
1: बार।
0: ना मानना तुम फिर भी उनसे हार,
1: बहुत
0: क्या
1: अच्छे,
0: कहने, क्या
1: वाह वाह।
0: कहने, बस फिर से थाम लेना तुम उम्मीद का हाथ,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: गिरकर फिर से संभल जाना, गिरकर फिर से
1: संभल
0: संभल
1: जाना
0: जाना, यही तो है मनुष्य का काम,
2: काम,
0: जब टूट जाओ तुम हर तरफ से तो थाम लेना उम्मीद का हाथ।
1: वाह वाह
0: बहुत बढ़िया,
1: वाह।
0: उम्मीद है वो चिड़िया, उम्मीद है वो
2: वो
0: चिड़िया
2: चिड़िया
0: जो तूफानों में भी गाती है, टूटी हुई शाखाओं पर फिर से नए घोंसले बनाती
1: क्या बात
0: है,
1: है,
0: क्या जिसने उम्मीद का थामा हाथ,
1: जी
0: जिसने
1: उम्मीद
0: उम्मीद
1: का
0: का
1: थामा
0: थामा हाथ,
1: हाथ।
0: उसने जीत लिए ये धरती आकाश।
2: क्या कहने, क्या कहने।
0: हार जाओ भले ही तुम 100 बार, हार जाओ भले
1: भले ही
0: ही
1: तुम
0: तुम सौ
1: 100 बार,
0: बार मगर उम्मीद का दामन ना छोड़ना मेरे
2: बहुत सुंदर,
0: यार,
1: वाह
0: ना
1: वाह
0: छोड़ना
1: वाह,
0: मेरे
1: बहुत
0: यार।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे, बहुत
0: धन्यवाद आप
1: अच्छे,
0: सबका, बहुत
1: बहुत
0: बहुत।
1: अच्छे। रुपिंदर जी बहुत बढ़िया, एक जिंदगी को जीने की कला सिखाती हुई उम्मीद रचना, और बहुत बहुत शुक्रिया इस रचना के लिए। और मुझे याद आ रहा है कि तुमको देखा यार जमाना भूल गए,
2: क्या बात
1: कि
2: है,
1: तुमको देखा यार
2: यार
1: जमाना
2: जमाना
1: भूल
2: भूल गए,
1: गए, हम तो अपने दर्द सुनाना भूल गए।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है,
0: क्या
1: कि
0: बात
1: तुमको
0: है,
1: देखा यार जमाना भूल गए, हम
2: हम
1: तो
0: तो
1: अपने
0: अपने
1: दर्द
0: दर्द
1: सुनाना
0: सुनाना
1: भूल
0: भूल
1: गए,
0: गए।
1: और तेरी एक मुस्कान पे जान लुटा बैठे,
2: आहा
1: कि
0: क्या बात
1: तेरी एक
2: है,
1: मुस्कान
2: मुस्कान
1: पे
2: पे
1: जान
0: जान
1: लुटा
0: लुटा
1: बैठे,
0: बैठे,
1: और तुम ही को यार बताना भूल
0: क्या बात
1: गए।
0: है, क्या बात है,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब,
1: बहुत
0: क्या
1: बहुत
0: बात
1: शुक्रिया आप
0: खूब,
1: सभी का,
0: बहुत
1: बहुत बहुत
0: खूब।
1: शुक्रिया। और चलते हैं हम अब रोपड़ की तरफ, जहाँ से डॉक्टर मीनू सुखमन जी हैं, जो नावल भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। डॉक्टर मीनू सुखमन जी से गुजारिश करता हूँ, वो अपनी रचना लेकर आएंगे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सागर, मैं हाजिर हूँ जिंदगी और उम्मीद लेकर।
1: आप भी उम्मीद लेकर
3: स्वागत
1: आए
0: है
1: हैं,
0: जी,
1: बार-बार
0: बिल्कुल।
1: स्वागत।
0: एक नया जख्म मिला, एक नई बात हुई,
1: जी
0: क्या बात है,
3: एक नया जख्म
0: जख्म
1: मिला,
0: मिला,
1: एक नई
0: एक नई
1: बात
0: बात
1: हुई।
0: हुई,
3: जिंदगी से आज फिर एक मुलाकात।
0: क्या बात है,
1: हा
0: क्या
1: हा
0: बात
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह।
0: खूब। शुक्रिया। वक्त के पास तो हर मर्ज का मरहम होगा,
1: जी
0: वक्त के
2: पास
0: पास
1: तो
0: तो
1: हर
0: हर
1: बात का
0: मर्ज का मरहम
2: मरहम
0: होगा,
2: होगा।
0: लोग कहते हैं मगर सदियों की बात हुई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत
2: जल
0: खूब।
2: गए परवाने तो चिरागों का गिला क्या करना,
1: आ हा
0: जल
2: वाह
0: गए परवाने
2: तो
0: तो चिरागों
2: चिरागों
0: का
2: का
0: गिला
2: गिला
0: क्या
2: क्या
0: करना?

0: करना हाथ से रस्म है दुनिया के, नई क्या बात है,
1: क्या
2: कहने
1: क्या वाह वाह वाह सुखमन बहुत अच्छे।
0: मुस्कुराते हुए मिलना, शुक्रिया सागर, मुस्कुराते हुए मिलना सभी से इरादतन, मुस्कुराते हुए मिलना सभी से इरादतन, यह हुनर सीख लिया हमने तो क्या बात हुई,
2: क्या बात है, क्या बात।
0: कांच के घर में रहे पत्थरों से दोस्ती की,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कांच के
1: घर में रहे पत्थरों से
0: दोस्ती की, फिर भी कहते हैं मोहब्बत में नायाब बात हुई,
1: क्या बात है, वाह वाह वाह।
0: कुछ मुसाफिर जो मिले राह में हम राह बने
1: जी,
0: कुछ मुसाफिर जो मिले राह में
1: हम
0: राह बने, मंजिलें दूर थी मगर अच्छी मुलाकात,
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उम्र भर लिखते रहे दबी दबी सारी बातें
1: जी,
0: उम्र भर लिखते
1: दबी
0: रहे
1: दबी सारी बातें,
0: दबी दबी सारी बातें, आज रोए सुखमन तो कहते हैं बरसात, शुक्रिया,
2: क्या बात हो,
1: बहुत अच्छे सुखमन जी,
3: बहुत खूब सुखमन जी। और अब मैं जो अब तक सभी को आवाज़ दे रहे थे, अब मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ, आदरणीय सागर सूद साहब जो कि पटियाला से हैं, उनकी अभी तक गज़लों की 80 किताबें शाया हो चुकी हैं। तो आइए सागर जी, और अपनी खूबसूरत रचनाओं से इन फिज़ाओं को महका दीजिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम, बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब देखिएगा,
3: स्वागत है जी,
1: कि खो गया बचपन जवानी खो गई,
3: क्या कहें,
1: कि खो गया बचपन जवानी खो गई, खूबसूरत सी निशानी खो गई,
2: क्या बात,
1: कि खो गया बचपन जवानी खो गई, खूबसूरत सी निशानी खो गई, और कह कहूं कि महफिलें ढूंढे कहां, कि कह कहूं कि महफिलें ढूंढे कहां, बात थी वो तो पुरानी खो गई, बहुत बहुत शुक्रिया, कि बात थी वो तो पुरानी खो गई, और आसमानी वो परी गुम चांद है, कि आसमानी वो परी गुम चांद है, खो गई है आज नानी खो गई, कि खो गई है, शुक्रिया, कि खो गई है आज नानी खो गई, और खेल बस ये रह गया है जिस्म का, कि खेल बस ये रह गया है जिस्म का, आत्मा की अब कहानी खो गई, बहुत बहुत शुक्रिया, कि आत्मा की अब कहानी खो गई, और जब मिली बारूद की हरसू फजा, कि जब मिली बारूद की हरसू फजा, बाग कोयल रात रानी खो गई, के बाद बाग कोयल रात रानी खो गई, और मक्ता देखिएगा कि आज सागर हो रहा है क्या मुझे, कि आज सागर हो रहा है क्या मुझे, सोच पकड़ी तो रवानी खो गई,
2: के
1: सोच पकड़ी तो रवानी खो गई, खो गया बचपन जवानी खो गई, खूबसूरत सी निशानी खो गई। और एक छोटी सी गजल का मतलब कुछ यूं भी,
3: स्वागत है,
1: कि कब मंदिर कब मस्जिद मिलता, कब मिलता मैखाने में,
2: क्या बात,
1: कि कब मंदिर कब मस्जिद मिलता, कब मिलता मैखाने में, जीवन को आराम मिलेगा जीते जी मर जाने में,
2: क्या बात,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, कि कब मंदिर कब मस्जिद मिलता, कब मिलता मैखाने में, जीवन को आराम मिलेगा जीते जी मर जाने में, और लाख कहूं मैं भूल गया हूँ लेकिन सच ये बात नहीं, कि लाख कहूँ मैं भूल गया हूँ लेकिन सच ये बात नहीं, वक्त लगेगा मुझको यारो उसकी याद भुलाने में, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त लगेगा मुझको यारो उसकी याद भुलाने में, और भोर हुई तो फिर से निकला आवारा बादल बनकर, कि भोर हुई तो फिर से निकला आवारा बादल बनकर, सारी रात बिता दी हमने जिस दिल को समझाने में,
2: क्या बात है,
1: सारी बहुत बहुत शुक्रिया, कि सारी रात बिता दी हमने जिस दिल को समझाने में, और खुशियों का एहसास ना होगा गर कोई तकलीफ ना हो,
2: क्या बात है,
1: कि खुशियों का एहसास ना होगा गर कोई तकलीफ ना हो, कांटों का भी हाथ रहा है फूलों को महकाने में, बहुत बहुत, कि कांटों का भी हाथ रहा है फूलों को महकाने में, और हम इतने नादान नहीं हैं, कैसी बातें करते हो,
3: क्या मिसरा है,
1: कि हम शुक्रिया, कि हम इतने नादान नहीं हैं, कैसी बातें करते हो, मत समझाओ सागर तुम क्यों आए हो मैखाने में, कि मत समझाओ सागर तुम क्यों आए हो मैखाने में, कब मंदिर कब मस्जिद मिलता, कब मिलता मैखाने में, जीवन को आराम मिलेगा जीते जी मर जाने में, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं फिर से चाहता हूं कि समय हमारे पास है तो उसका फायदा उठाया जाए, उसका फायदा उठाते हुए मैं फिर से एक दौर में

0: कुछ रचनाएं चाहता हूं कि आपसे के सामने रूबरू हों, और सबसे पहले फिर से आवाज देने जा रहा हूं मैं, जिसे कहता हूं कि कोयल सी आवाज जैसी, मल्लिका कुसुम खुशबू।
1: जी, बहुत शुक्रिया सागर साहब। मेरी गजल के छंद अशआर हैं, तुम्हारी इंक सारी जा रही है,
0: अच्छा हाँ,
1: तुम्हारी
0: इंक सारी जा रही,
1: इंक सारी
0: इंक
1: जा
0: सारी,
1: रही है, हमारी राजदारी जा रही
0: ओ
1: है,
0: हाँ,
1: हमारी राजदारी
0: वाह
1: जा
0: वाह वाह
1: रही
0: वाह,
1: है। और कहो मत रायगां इस जिंदगी को, कहो मत
0: रायगा,
1: रायगां इस जिंदगी को, इबादत में गुजारी जा रही है।
0: वाह वाह वाह
1: कहो
0: वाह,
1: मत रायगां इस जिंदगी को, इबादत में
0: गुजारी
1: गुजारी
0: जा
1: जा
0: रही
1: रही
0: है
1: है। और शेर देखिएगा
0: जी।
1: कि तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते, तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते, हमारी उम्र सारी जा रही है।
0: क्या
1: तुम्हारी
0: वाह
1: राह यूं ही
0: महत्वपूर्ण,
1: तकते
0: वाह
1: तकते,
0: वाह वाह,
1: हमारी उम्र सारी जा रही है। और शेर है कि मेरी कश्ती बचा।

0: हमारी राजदारी जा रही है, हमारी
1: हाँ,
0: राजदारी जा रही है। और कहो मत रायगां इस जिंदगी को, कहो मत रायगां इस जिंदगी को, इबादत में गुजारी जा रही है। कहो मत रायगां इस जिंदगी को, इबादत में
1: गुजारी
0: गुजारी
1: जा
0: जा रही
1: रही है
0: है। और शेर देखिएगा
1: जी।
0: कि तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते, तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते हमारी उम्र सारी जा रही है।
1: क्या बात,
0: तुम्हारी
1: वाह वाह
0: राह यूं ही
1: महत्वपूर्ण,
0: तकते तकते
1: वाह वाह
0: हमारी उम्र सारी जा रही है। और शेर है कि मेरी कश्ती बचा ले ऐ समुंदर,
1: मेरी
0: मेरी
1: कश्ती बचा
0: कश्ती
1: ले है
0: बचा
1: समुंदर।
0: ले ऐ समुंदर, तेरी मौजों से हारी जा रही है।
1: हाँ, वाह
0: मेरी
1: वाह,
0: कश्ती बचा ले ऐ
1: बहुत बढ़िया कुसुम,
0: समुंदर,
1: बहुत बढ़िया,
0: तेरी मौजों
1: मौजों
0: से
1: से हारी
0: हारी
1: जा
0: जा
1: रही
0: रही
1: है।
0: है।
1: हाँ
0: बहुत बहुत
1: क्या बात,
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और शेर देखिएगा कि हमारी आंख का काजल चुरा कर, हमारी आंख का काजल चुरा कर नजर किसकी उतारी जा रही है।
1: क्या बात,
0: कहो हमारी
1: अरे वाह
0: हमारी आंख
1: वाह
0: का
1: वाह वाह,
0: काजल
1: हमारी आंख
0: चुरा
1: का काजल
0: कर
1: चुराए के
0: नजर
1: नजर किसकी
0: किसकी
1: उतारी।
0: उतारी
1: बहुत
0: जा
1: अच्छी
0: रही
1: कुसुम, बहुत
0: है।
1: अच्छी
0: क्या
1: शेर,
0: बात, बहुत बहुत
1: वाह
0: धन्यवाद
1: वाह
0: जी।
1: वाह वाह।
0: और आखिरी शेर है कि तुम्हारी याद के जुगनू पकड़ कर, तुम्हारी याद के जुगनू पकड़ कर शबे फुरकत गुजारी जा रही है।
1: बहुत
0: तुम्हारी याद के जुगनू पकड़ कर
1: शबे
0: शबे
1: फुरकत,
0: फुरकत गुजारी जा रही
1: बहुत
0: है। बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: बढ़िया,
0: जी,
1: बहुत
0: बहुत बहुत
1: बढ़िया कुसुम
0: शुक्रिया
1: जी,
0: जी,
1: बहुत ही बढ़िया,
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: शुक्रिया।
0: जी।
1: और आइए दोस्तों, चलते हैं हम फिर से टांडा की ओर, जहाँ से हमारे बीच में रुपिंदर कौर जी हैं। रुपिंदर जी से गुजारिश करूँगा, एक रचना पहले उम्मीद की थी, अब फिर उम्मीद की लेकर आएंगे मुझे लगता है
2: शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत।
1: जी।
2: अगली जो कविता मैं पेश कर रही हूँ वो है प्रेम पर।
1: जी
2: प्रेम सुख देता है,
1: हाँ
2: ये इस कविता का नाम है।
1: जी
2: सुना है प्रेम सुख देता है,
1: जी
2: जीवन को खुशियों से भर देता है।
0: क्या बात है, क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: है।
1: वाह,
2: सुना है प्रेम सुख
1: सुख
2: देता
1: देता है,
2: है,
1: जीवन को
2: जीवन को
1: खुशियों
2: खुशियों
1: से
2: से
1: भर
2: भर
1: देता
2: देता
1: है।
2: है,
0: बहुत सुंदर।
2: मगर मैंने तो प्रेम में विरह को देखा है।
0: क्या खूब है,
2: मैंने तो प्रेम में विरह
0: विरह
2: को
0: को
2: देखा
0: देखा है।
2: है, जहां दो दिल मिलकर भी जुदा हो जाते हैं।
0: क्या कहने है?
2: प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से टूट जाते हैं। सुना है प्रेम सुख देता है,
0: बहुत
2: जीवन
0: बढ़िया,
2: को खुशियों से भर
1: भर
2: देता
1: देता है।
2: है। प्रेम में मिली पीड़ा बार बार हर बार, प्रेम में मिली पीड़ा बार
0: बार
2: बार
0: बार
2: हर
0: हर बार,
2: बार, ना गया फिर भी उसका ख्याल।
0: क्या कहने।
2: ना खुश हूं ना हूं उदास,
1: जी
2: ना खुश हूं ना हूं उदास, समझ नहीं पाया मैं अपना ये हाल।
0: क्या कहने, क्या कहने।
2: कभी तो दूर वो होता है, भूल जाता हूं मैं सब ख्वाब, तो कभी पास होकर भी दूर सा लगता है मुझे वो अपना खास।
0: बहुत सुंदर, बहुत
2: सुना
0: सुंदर।
2: है प्रेम में बहुत सुख मिलता है, प्रेम खुशियों से भर देता है।
1: जी
2: जब कभी रात के अंधेरे में चांदनी उतर आती है आंगन में, आती है तुम्हारी याद फिर से एक बार।
0: बहुत
1: जी
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: मानो जगमगा उठा हूं मेरा संसार, प्रेम में पीड़ा तो मिली बार बार, न
0: बहुत
2: जाने
0: बढ़िया,
2: फिर क्यों सुना मैंने प्रेम में बहुत सुख मिलता है।
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: सुंदर,
1: है,
0: बहुत
1: वाह वाह
0: सुंदर,
1: वाह,
0: बहुत खूब।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत आप
1: वाह
2: सबका।
1: वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई सही बात है कि प्रेम में सुख मिलता है, क्योंकि प्रेम में अगर दुख भी मिलता है तो प्रेम की वजह से मिलता है, तो प्रेम में तो सुख रहेगा ही रहेगा, क्योंकि
2: जी
1: वो भी किसी अपने का दिया होता है। बहुत अच्छी रचना रुपिंदर जी। और चलिए दोस्तों, फिर से चलते हैं रोपड़ की ओर, और डॉक्टर मीनू सुखमन रचना के साथ।
3: मैं हाजिर हूं अपनी रचना, थोड़ा ठहर कर देखें।
1: आहा
3: बहुत सुंदर।
1: हा हा, स्वागत
3: दौड़ती
1: है।
3: भागती दुनिया में जरा ठहर कर देखें, एक अरसे से मिले नहीं आज खुद से मिलकर
1: क्या
3: देखें।
1: बात
0: क्या
1: है, वाह
0: बात,
1: वाह
0: क्या
1: वाह, खुद से
0: कहने,
1: मिलकर
0: क्या
1: देखें, बहुत अच्छे
0: कहने,
1: सुखमन जी,
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब।
1: अच्छे।
3: दूसरों की ख्वाहिशों का हिसाब तो रोज रखते हैं,
1: हाँ
0: क्या कहने,
3: दूसरों की ख्वाहिशों का
1: हिसाब
3: हिसाब तो
1: तो रोज
3: रोज
1: रखते
3: रखते
1: हैं।
3: हैं, हमारी आंखों में क्या टूट गया, जरा आंखें भर कर देखें।
0: बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बढ़िया,
3: बहुत
0: बहुत
3: बहुत
0: बढ़िया।
3: शुक्रिया। वक्त की आंच पर पकते रहे ता उम्र हम, वक्त की आंच पर
1: पकते रहे,
3: पकते रहे ता उम्र हम, जो कच्चे रह गए जज्बात उन्हें आज मुकम्मल कर देखें।
0: बहुत सुंदर,
3: मशविरों तो दुनिया भर को मुफ्त में दिए हमने,
0: क्या कहने,
3: मशवरे तो दुनिया भर को
0: मुफ्त
3: मुफ्त
0: में।
3: में

0: लिए हमने अपने दिल की उलझन पर भी थोड़ा गौर कर
1: देखा।
0: मंजिलों की धुन में पांव के छाले नहीं गिने, मंजिलों की धुन में पांव के छाले नहीं गिने, आज सुकून मिले उस राह पर भी मुड़ कर
2: देख।
0: शुक्रिया। कश्ती को तो तूफानों से बचा लाए हर दफा, कश्ती को तो तूफानों से बचा लाए हर दफा, जो साहिल पर ही डूब गया उस यकीन का मंजर
2: देखें।
0: जो साहिल पर ही डूब गया उस यकीन का मंजर देखें, उम्र गुजर गई सुखमन ग्यारों की महफिलें सजाते
2: क्या बात है।
0: उम्र गुजर गई सुखमन ग्यारों की महफिलें सजाते हुए, तन्हाई में अपनी खामोशी को आज गुनगुना कर
1: देखें।
0: तन्हाई में अपनी खामोशी को आज गुनगुना कर देखें।
3: बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बढ़िया,
3: बहुत खूबसूरत रचना सुखमन जी। और अब मैं फिर से निमंत्रण देने जा रही हूँ सागर सूद जी को कि वो इस खुशनुमा शायरी के माहौल को अपनी रचनाओं से, अपने खूबसूरत अंदाज से और भी प्यारा बना दें। आइए सागर जी।
4: बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ याद आ रहा है कि तू जो मुझसे जुदा नहीं होता, कि तू जो मुझसे जुदा नहीं होता, पास मेरे भी क्या नहीं होता।
1: क्या बात है।
4: तू जो मुझसे जुदा नहीं होता, पास मेरे भी क्या नहीं होता। और एक शिकवा रहेगा बस तुझसे, काश तू बेवफा नहीं होता। एक शिकवा रहेगा बस तुझसे, काश तू बेवफा नहीं होता। एक रचना आज कविता पेश कर रहा हूँ,
3: स्वागत है जी,
4: जो पापा की याद में लिखी।
3: जी जी जी।
4: के पापा, आज फिर आपकी अलमारी खोली मैंने, आपकी शर्ट से अब भी वही हल्की सी खुशबू आती है, पसीने और इतर में घुली मेहनत की महक। पर पापा, अब आपकी आवाज सिर्फ यादों में आती है, घर में सब कुछ है बस आप नहीं हैं। आपके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ एक मकान लगता है,
0: सच
4: जिसमें सन्नाटा किराए पर रहता है। मैं अचानक बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां उम्र नहीं देखती, वो बस कंधे ढूंढती हैं।
3: क्या कहने।
4: और अब ये कंधे आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज दिल से एक ही आवाज निकलती है, पापा आप जहाँ भी हो कृपया खुश रहना, आपके बिना सब कुछ है पर सुकून नहीं है, सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चाहता हूँ कि कुसुम खुशबू ही महफिल को अंत की तरफ लेकर जाए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी। मैं एक गजल तरन्नुम में सुनाने जा रही हूँ। हम

0: बहुत शुक्रिया जी। और शेर देखिएगा, मेरी यादें सहेज कर रख लो।
1: क्या बात है।

0: और एक गजल के चंद अशआर
1: तरन्नुम में कुसुम जी
0: तरन्नुम में।
1: जी
0: कभी तारीकियों में जिंदगी ठोकर ना खाएगी।
1: वाह वाह वाह वाह,

0: की महक उनको,
1: गुलाबों की महक तुमको
0: बहुत बढ़िया कुसुम,
1: मेरी यादों से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और शेर देखिएगा
0: इशा
1: हमें।

0: बहुत ही खूब बनकर आपकी तस्वीर आएगी। और गजल का मकतार्ज
1: जी
0: है,
1: स्वागत।
0: ना उल

0: जख्म और मरहम का जवाब नहीं।
1: ये जख्म देगी और कभी मरहम लगाएगी।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया कुसुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, कुसुम जी की इस शानदार आवाज़, मैंने पहले कहा था कि कोयल जैसी आवाज़ है, कुसुम जी बहुत बहुत शुक्रिया कि अब इस महफिल के अंत में मुझे याद आ रहा है कि उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया।
2: क्या बात है
0: कि उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया, वो भी मेरा नहीं हुआ सागर जिसकी खातिर जमाना छोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे रहेंगे और इस कार्यक्रम को सुनेंगे और हमें बताएंगे कि कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं विशेष तौर पर फिर से कुसुम खुशबू जी का, रुपिंदर कौर जी का, डॉक्टर मीनू सुखमन जी का और अपना भी कर देता हूँ सागर सूद पटियाला से बहुत बहुत

0: शुक्रिया, फिर मिलेंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
1: हुणे तुसी कवि गोष्ठी सुन रहे सी। भाग लैण वाले कवि सन सागर सूद, कुसुम खुशबू, रुपिंदर कौर ते मीनू सुखमन। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 10:30 बज चुके ने। लो हुण चंद गज़लां समात फरमाओ। सब तो पहला रूप कुमार राठौर ते सोनाली राठौर दी आवाज़ च एक गज़ल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा

0: मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister

0: Ambien ut ars gen gi chadi ke des to aba Sukhvinder Singh di awaz sun si ji geet agle phone call jude ne sade nal karde han na gal swagat ji bahut bahut tada
1: Sasrikal sir main Santosh Kumar aur main Kozhikode Kerala se main Santosh Kumar Yadav bol raha hu sir
0: ji Santosh ji bahut bahut swagat tada program de
1: vich bahut bahut swagat sir aur mera phone attend kar liya phone attend karte hain sir main ek hi bol raha hu sir
0: ji
1: मीठी बोली बोल के और न सताओ अपना दिल बहलाने के लिए संतोष बेचारा के दिल के तीर मत चलाओ
0: जी जी जी जी बिल्कुल ही ऐसी कोशिश कर
1: और मैं एक चीज में बोल रहा आपका स्वभाव इतना अच्छा है दिल ने जिसका नाम लिया मैंने उसका दामन थाम लिया और जब जब दिल पे दर्द हुआ तो मैं सिर्फ आपका नाम लिया
0: वाह जी वाह शुक्रिया जी आकाशवाणी के माध्यम से देखो जी आपके साथ बात हो रही है आपका आपका दिल बहला रहे हैं हम किसी भी तरह से तो उसकी
1: सर आपका स्वभाव इतना अच्छा है ना सर इतना स्वभाव अच्छा है और मैं क्या बोलूं सर मैं अपने बारे में बराज में नहीं करता आप बिल्कुल अच्छा आदमी और मैं जो भी हूँ और सभी जितना भी सुनता होगा आपके प्रोग्राम में मैं उससे 91 से मैं जुड़ा हुआ हूँ सभी को मालूम होगा
0: जी जी जी
1: मैं अपने बारे में मैं उसको मालूम पड़ जाएगा मैं थोड़ा डिटेल में बोल देता हूँ मलसिया साकोट में मैं रहता था 1991 में मैं और भी मैं केरल में जॉब करता हूँ सर ये चीज का आप सर बिल्कुल अच्छा आदमी है और आपका मैं ये चीज बोलता आपका स्वभाव बिल्कुल मस्त है और कोई भी है ना सर मैं ये चीज मैं बोलता हूँ
0: हाँ जी हाँ जी
1: मैं ये चीज मैं बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ तो कोई भी एंकर है ना मेरे पास में रिकॉर्ड है सर मैं जो भी कोई बात करता हूँ मेरा टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग होता है मेरा टेलीविजन मेरा स्मार्ट है उसमें भी रिकॉर्डिंग होता है और ये चीज का होता है किसी को बिहारी बोलते बिहारी है इधर से कॉल
0: हाँ
1: करता
0: नहीं आपने
1: मैं
0: आपने आपने
1: वायरल कर दूं तो मैं
0: संतोष जी आप जी ने आपने
1: आप अच्छा आदमी है
0: हाँ,
1: तो ये
0: आपने आपने बात बताई थी पिछली बार भी
1: दिल से आपका सैल्यूट है सर
0: जी जी गीत बताइए अच्छा जी चलो पिछली बातें अब हम भूलते हैं अब गीत बताइए कौन सा सुनेंगे
1: सर मैं आपको क्या बोले मैं इतना खुशी मैं खुश में तो मैं पूरा रहता हूँ सर आप है ना अपना मनपसंद का कोई भी सुना दीजिए सर
0: नहीं फिर भी आप मेरे आज तो गाने की टाइम की शुरुआत भी जी हुई थी गुरदास मान से सो गुरदास मान मेरे सामने आर्टिस्ट पड़े हैं बता दें उनका कोई गीत सुनना है आपने तो
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए
0: जी
1: दुखों में दसना जरूर चाहिए
0: जी जी ठीक है जी आपको यही गाना सुना देते हैं हम जी
1: शुक्रिया सर सच्चाई पर इंसान को चलना चाहिए सर
0: जी
1: हाँ। नहीं चलना चाहिए
0: बिल्कुल जी शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए जी आप लॉजी आप, आपकी फरमाइश
1: पे आगे
0: जी जी शुक्रिया जी संतोष जी बिल्कुल जुड़े हुए इसी प्रोग्राम दे विच ते हर बार दी तरह उन्होंने अपनी गल पूरी करनी होंगी है जी ते मैं भी उन्होंने मौका दे दिना उन्होंने शुक्रिया इन्हों का लो सुन देना की फरमाइश टैग लगी

हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए, बिल्कुल जी, थोड़ा थोड़ा। और कुदरती साढ़े इंसानों के विच दी इमोशनज मिले ने, हासे दे, गुस्से दे, रुसण दे, मनाउण दे, ये सारे का मज़ा लै लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जिंदगी नू जीण दे लई कोई ना कोई ऐसे मोड़, फिर जदों हासे वाले, कुछ दुख कुछ तकलीफ वाले भी ते

0: हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए, बिल्कुल जी, थोड़ा थोड़ा। और कुदरती साढ़े इंसानों के विच दी इमोशनस मिले ने, हासे दे, गुस्से दे, रुसण दे, मनाउण दे, ये सारे का मज़ा लै लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जिंदगी नू जीण दे लई कोई ना कोई ऐसे मोड़, फिर जदों हासे वाले, कुछ दुख कुछ तकलीफ वाले भी, ते कुछ यादा, ये सब कारण बनते। नहीं तो यादा कहिंदे ने ना कि याद जिहड़ी आ उह अपने आप नहीं याद रहिंदी, उहदे नाल कुछ होर भी जुड़िया हुंदा है, कुछ जिहदे करके वो याद जिहड़ी है सानू बार बार याद आती है। तो जी बिल्कुल, हंसे होवांगे किसी पल किसी समय के उत्ते, तो सानू समा याद आएगा, वो लोग वो इंसान याद आएंगे, वो जड़े जिन्हां दे नाल असी बैठ के हंसे खेडे होवांगे। गुरदास मान की आवाज़ सुनते सी जी गीत, तो साढ़े को अगले फोन कॉलर भी जुड़ गए हैं। स्वागत जी बहुत बहुत थोड़ा।
1: हेलो, सत श्री अकाल हरप्रीत जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो फकीर चंद रसनिया जी,
0: जी। फकीर चंद जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा प्रोग्राम दे विच।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत थैंक यू।
0: ते
1: मैनू
0: दसो।
1: तो हरप्रीत जी अज इदा लगता जिमें अज शुक्रवार हो।
0: वाह जी वाह, शुक्रवार। बस फिर देख लो फिर अगे अगे ताड़ी, फिर हुण तुसी गलती ना कितें छुट्टी ना मान लिओ अगे शनि ऐतवार दी है ना, ये ना भी फिर
1: कोई
0: तुहाडा।
1: कोई ड्यूटी तो बनदियां रहिंदियां जी। हां जी
0: हाँ जी हाँ जी, ते दसो केड़ा गाना सुनाइए अज फिर।
1: जी, तो फिर अजी कुलजीत मान साहब दा सुना दो,
0: हाँ जी
1: तेरे दिल्ली तो सूरत दी है हिरदी।
0: जी, लो तेरे टिल्ले तो सूरत दी है, लो जी सुनदे कुलदीप माणक दी आवाज़ फिर ताड़ी फरमाइश ते गीत।
1: ठीक,
0: शुक्रिया बहुत बहुत थोड़ा, फकीर चंद जी दी फरमाइश ते कुलदीप माणक दी आवाज़ सुन रहे हैं जी ये गीत।

मोहम्मद रफी दी आवाज़ सुने जी ए प्यारा जिहा गीत ते जुड़े ने चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुश दिल संगीत राणी जिंदल पप्पू समाइल खुश दिल हंसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुश दिल ते पूरा खुश दिल परिवार जुड़िया होया जी प्रोग्राम दे विच ते सुनना चाह रहे ने जी कोई भी गीत ते लो जी एक होर गीत मैं मेरा जी कर रहा जी तुहाडे सारे नाल सांझा कर ही लवां गुरदास माफ करना मोहम्मद रफी दी आवाज़ दे विच एक गीत जिहड़ा कि जदों डेनवर तों मोहन चंद्र जी ने फोन मिलाया ना ते पहला गीत दिमाग च ये आया पर उस टाइम अचानक सिस्टम च मैं सामने रिफलैक्ट नहीं होया गीत ते मैनू दूसरा गाना चलाना पिया पर मेरा जी कर रहा जी मोहम्मद रफी का ये भी गाना असी पंजाबी दा सुन लीए ते जी ते जिहड़ा चकला बाजार समाणा शहर तों आई है फरमाइश उसनू भी मैं इसे विच पूरा कर रहा हाँ।

दाना पानी खिंच के लिया मुहम्मद रफी दी आवाज़ से सुनिया जी ये गीत ते साडे अगले फोन कॉलर जुड़े कर दिया उन्होंने भी गल स्वागत जी तुहाडा बहुत बहुत जी तुहाडी फोन लाइन मिल गई है जी हैलो हाँ जी तुहाडी आवाज़ आ रही है जी दसो जी लग रहा जी कोई फिर टेक्निकल इशू है जी जिदे करके इन्हों की आवाज़ जी नहीं पहुँच पा रही जी एक बार फिर कोशिश कर लिए तुहानू मेरी आवाज़ जो पहुँच रही हो नहीं जी शायद इन्हों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही किसी तकनीकी खराबी के कारण तो सुनद जी प्रोग्राम का अगला गीत तुसीं इस तरह ही प्रोग्राम सौगात दे भी जुड़े रहना जी क्योंकि तकरीबन 15 मिनट का साथ हजे तुहाडा ते साडा जुड़िया होया है जी ते लो जी महेंद्र कपूर दे दिलराज कौर की आवाज़ च सुनदे हैं गीत

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत ते साढ़े आखिरी फोन कॉलर जुड़ गए ने सो मैं सोचा जी क्योंकि रह गए ने 4 मिनट का समा तो जरूर उन्होंने कॉल में ले लिया जाए। स्वागत जी बहुत बहुत थोड़ा।
1: हेलो हरप्रीत सिंह जी साहब जी
0: सत श्री अकाल जी धर्मासागर जी स्वागत थोड़ा
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
0: जी जी जी शुक्रिया
1: एक जी सुनना सर जी सुमन कल्याणपुर जी वास्ते
0: जी बड़े सोहने पंजाबी गीत काफी गाए ते बहुत चंगा लग रहा तुसी उन्हां नूं याद कर रहे हो ते असीं सारे सरोते मिलके लो जी उन्हां नूं हां उन्हां नूं याद जी पंजाबी नूं जिहड़ी बड़ी सोहनी श्रद्धांजलि इस गीत दे जरिए ते लो शुक्रिया तुहाडा उन्हां नूं याद करन दे लई ते तुहाडा फोन मिलाउण दे लई भी जी शुक्रिया जी। लो जी धर्मासागर जी की फरमाइश ते सुमन कल्याणपुरी जी ने लंघी 31 मई सदीवी विछोड़ा देके गए ने जी बड़े सोहने सोहने पानी वार बने दिए माए मेहंदी तां बीजा मैं फिर दही दही वे बाबुल बाबुल विदा करें दिया निक्की निक्की बूंदी ते एड़ा उड़ा एड़ी उड़ा एड़ा इड़ी ससा बोलना गीत इन्हां सारियां ते होर कई गीतां नूं आवाज़ सुमन कल्याणपुरी ने दिती उन्हां नूं याद करदिया होया ते अज दे इस प्रोग्राम दा ये आखिरी गीत होवेगा सुमन कल्याणपुरी दी आवाज़ दे विच सुनदिया जी पंजाबी ये गीत। सारन दा बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई।

सबते ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई अमरीक सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। तुम मेरी सोभा, तुम संग रचिया, तुम मेरी ओट, तू है मेरा तकिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी उस बेअंत शोभा दे स्वामी अकाल पुरख प्रभु दे प्रेम रंग विच रते हुए महसूस करते हुए फरमाउंदे ने कि हे अकाल पुरख परमेश्वर, मैनू तेरा ही आसरा है। अकाल पुरख परमात्मा दी शोभा नित नवी है। ओ निता प्रति बेअंत बख्शिशां करके कुदरत नू नवाजदा है, जिस दा अंत अर्शी देवते भी पौण तो असमर्थ रहे, बस उस तो ता बलिहारे ही जाया जा सकता है। राग कल्याण विच गुर फरमान है, मेरे लालन की सोबा सद नवतन मन रंगी सोबा। सरवण करदे आ भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: मेरे लालन की सोबा, सद नवतन मन रंगी सोबा। इस शब्द का गायन किया भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: कल्याण महला पंजवा। मेरे लालन की सोभा, सद नव तन मन रंगी सोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी। योग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपहें तरंगी। कहो नानक संतन बलहारै, जो प्रभ के सद संगी। विचार अधीन यह पावन पवित्र शब्द, शहीदां दे सिरताज, बाणी दे बोहित, पंचम पातशाह गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उचारण किया होया है। यह पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1322 अंग ते कल्याण राग दे अंदर सुभायमान है। कल्याण महला पंजवा दे सिरलेख हेठ दर्ज इस शब्द दे अंदर पंचम पातशाह गुरुदेव जी ने उस महान अकाल पुरख वाहिगुरु की शोभा का वर्णन किया है जिस वर्गा दूसरा

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

0: गुण कर तारे उचरे गुर अमरदास जिन सेवो तिन दुख दरिद्र पर हर परे।
1: चित चितों अरदास का

सरब चिंतु जुपाग सात संगत हों तको तेरे हुकम पवे निशां तो करो साहब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिश नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण परख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करना।

0: जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवै
1: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सार काम।

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसादी देव हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तर न जाई, तो टिटका तै चमाली दान मिले छाखाई, अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तर का पाई, छोटी ले पखंडा नाम ले जाय तर नाम हला पहला।
1: मांस खाने करे निवास।